ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 माह के बैसाख मास की 20वीं तिथि। तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। प्रातः की 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई

0: इंडियन से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है मातृ प्रेम। वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
2: या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्रोताओ, हमारी शास्त्रीय परंपरा में माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हम हर किसी ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। माता गर्भधारण कर 9 मास तक हमारी संरचना करती है और उसके पश्चात दूध पिलाने से लेकर भोजन, कपड़े, शिक्षा, दीक्षा सब कुछ माता की देखरेख में होता है। इसलिए मातृ प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। माँ खुद गीले में सोती है और अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। एक माँ का उत्तरदायित्व निभाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमें दुनिया भर की तमाम माताओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने घरों को देखें तो वहां पर माता की उपेक्षा उस घर को नरक स्वरूप बना देती है। जिन घरों में माता के प्रति अगाध प्रेम, निष्ठा, समर्पण, सेवा इत्यादि होते हैं, वे घर हमेशा स्वर्ग की भांति चमकते रहते हैं। किसी भी प्रांत में चले जाइए, किसी भी भाषाई क्षेत्र में चले जाइए, माँ के लिए असंख्य कहानियाँ, पहेलियाँ, दोहे, गीत, न मालूम कहाँ कहाँ तक माँ के औदार्य को कहने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे हमने माता के लिए विशेष कुछ नहीं किया। जितना भी हम करते हैं वह कम दिखाई देता है। मातृ प्रेम सर्वोच्च है। जो संतान अपनी माँ से प्रेम करती है उसका भाग्य उज्ज्वल होता है। माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति है। माँ ममता का गंगा जल है। माँ एक अद्वितीय शक्ति है। इसीलिए हमारे यहाँ नवरात्रों में माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की लगातार 9 दिन तक समस्त भारत में पूजा अर्चना की जाती है, जो अपनी संतति को एक नई शक्ति से भर देती है और उसके विकास के लिए आशीर्वाद देती है। जिन्हें माँ का आशीर्वाद मिला होता है वे लोग कभी भी पिछड़ते नहीं हैं। वे लोग कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। जिन लोगों को माँ का प्रेम नहीं मिलता वे लोग असंतुष्ट रहते हैं। वे लोग असफल हो जाते हैं अपने प्रयोजन में, अपने लक्ष्य में। उनके भटकने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जो मातृभक्त होता है वो कभी भटकता नहीं है और ना किसी को भटकाता है। आज हमारे सामूहिक परिवार टूट रहे हैं। हम अपनी माताओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ के त्याग और बलिदान का अनूठा और अनुपम उदाहरण है। एक माँ जनक्रांति ला सकती है। एक माँ अपने भीतर की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान कर सकती है। एक माँ अपने देश, काल, पर्यावरण और परिस्थिति को बहुत ही सरलता से, सहजता से लेते हुए हर संघर्ष में विजय

0: प्रदान कर सकती है। इसलिए मत भूलें कि माँ का प्रेम सबसे ऊंचा है और हमें इससे वंचित नहीं रहना है। हमें अपनी माँ की सेवा करनी है, हमें अपने माँ के आदेश की पालना करनी है। जो ऐसा नहीं करते वे आधे अधूरे रह जाते हैं, और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी संतान आधी अधूरी रहे। तो आइए हम भी संकल्प करें कि हम अपनी माता को कभी निराश नहीं करेंगे, कभी उनका अपमान नहीं करेंगे, उनकी कही गई हर बात को स्वीकार करेंगे। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके भीतर शक्ति का स्रोत फूट पड़ेगा और आप जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था मातृ प्रेम, वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। आरंभ होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। लीजिए पहले सुनिए अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भजन।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 52 से दोहा संख्या 55 तक का सहस्वर पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दिन में 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे आधुनिक गृहिणी और मानसिक शांति, बदलते मौसम में सेहत का ख्याल, छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी योजनाएं, पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार और साथ ही साथ कुछ ब्यूटी टिप्स होंगे और रसोई से कुछ बातें और साथ ही साथ होगा संगीत।

संध्या 5:05 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी प्रदूषण को रोकने में हमारा योगदान। लघु जानकारी होगी एड्रेनल हार्मोन भूकंप। विशेष कार्यक्रम होगा युवा तरंग आकाशवाणी के संग। राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर के कैंपस में आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। वाचक स्वर श्री माधव व्यास, सुश्री इतिश्री पारिक, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा, संयोजन श्री अमित सिंह का।

संध्या 7 बजे कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे मौसम पूर्वानुमान, सूचनाओं का महत्व, कैच द रेन अभियान, किसान सम्मान निधि, पशु आहार में कैल्शियम की भूमिका, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मौसम की जानकारी के साथ साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें चर्चा के विषय होंगे यातायात नियमों का पालन करें, अनुशासन का महत्व, नैतिक मूल्यों का विकास करें और साथ ही साथ होगा फिल्मी संगीत। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर कार्यक्रम होगा सौरभ। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, डिजिटल युग में शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार होंगे श्री मोहर सिंह मीणा।

8:45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 9:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम होगा मुकुल, इसे आज आपके लिए पेश करेंगी अन्विती गोस्वामी। 10:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बातें। विषय है मधुमक्खी पालन। वाचक स्वर है श्री अश्विनी व्यास का।
1: किसान भाई राम राम। मधुमक्खी पालन अपन वास्तर एक फायदे रो लघु उद्योग है। इटालियन मधुमक्खी पालन वास्तर प्रयुक्त मौन ग्रह में लगभग 380,000 तक मधुमक्खियां होवे, जिके में एक रानी मक्खी, कुछ सौ नर और शेष मधुमक्खियां होवे। रानी मक्खी आ लंबे उदर और सुनहरे रंगरी मधुमक्खी होवे, जिकी आसानी से पहचानी जा सके। इरो जीवन का लगभग 3 साल होवे। संपूर्ण मौन परिवार में एक ही रानी होवे, जिकी अंडा देने रो काम करे, जिकानी संख्या 2,500 से 3,000 प्रतिदिन होवे। आ दो प्रकार रा अंडा देवे, गर्भित और अगर्भित अंडा। इरे गर्भित अंडा सु मादा और अगर्भित अंडा सु नर मधुमक्खी विकसित होवे। युवा रानी रानी कोष और विकसित होवे, जिके में 15 से 16 दिन रो समय लगे। मौन ग्रह प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी आपरो छत्तो जिको है पेड़ रे खोखली, दीवार रे कोना, पुराना खंडर आदि रमाय नहीं बनावे है। इसु शहद लेवण वास्तर इन्हें काट निचोड़ो जावे, लेकिन ई विधि सु अंडा रो लार्वा और प्यूपा रो आदि रो रस भी शहद में मिल जावे, सागे ही मौन वंश भी नष्ट हो जावे। प्राचीन काल में जब मधुमक्खी पालन व्यवसाय तकनीक विकसित कोनी हुई थी, बी टाइम आई प्रक्रिया शहद प्राप्ति वास्तर अपनाई जाती थी। इसु बचन वास्तर वैज्ञानिक और पूर्ण अध्ययन शोध रे बाद में कई नई तकनीक आई, जिके में मौन ग्रह और मधु निष्कासन यंत्र रो आविष्कार होयो। मौन ग्रह लकड़ी रो एक विशेष प्रकार सो बनोड़ो बक्सो होवे और मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। मौन ग्रह रो सबसे निचलो भाग तलपट कहलावे और लगभग 381+2 मिलीमीटर लंबो, 266+2 मिलीमीटर चौड़ो और 50 मिलीमीटर ऊंचाई आड़ो लकड़ी रे पट्टा सो बनोड़ो होवे। तलपट रे ठीक ऊपरी वाले भाग में शिशु अंड कहलावे, जिकेरी बाहरी माप 286+2 मिलीमीटर लंबी और 266+2 मिलीमीटर चौड़ी और 50 मिलीमीटर ऊंची होवे। शिशु खंडरी आंतरिक माप 240 मिलीमीटर लंबी, 320 मिलीमीटर चौड़ी और 173 मिलीमीटर ऊंची होवे। शिशु खंड में अंडा लार्वा प्यूपा पायो जावे है। मौन वंश में तीनों सदस्य श्रमिक रानी और नर कहलावे। मौन ग्रह रे 10 भाग में 10 फ्रेम होवे। श्रमिक मधुमक्खी द्वारा शहद रो भंडारण ई कक्ष में ही करो जावे। इरे अलावा मौन ग्रह में 2 ढक्कन होवे, आंतरिक और बाह्य ढक्कन। आंतरिक ढक्कन एक पट्टी जैसी आकृति रो होवे और बिल्कुल बीच रे मायने एक छेद होवे। जब मधुमक्खी शिशु अंडा में होवे तो आंतरिक ढक्कन शिशु खंड पर राखी जोड़ो होवे, फिर बांडरो ढक्कन ढक दियो जावे और ई ढक्कन रे ऊपर एक टिंडी चादर लागोड़ी होवे, जिकी वर्षा ऋतु में पानी ने अंदर प्रवेश को नी करण देवे। मौन ग्रह में लकड़ी रो एक चौकोर स्टैंड भी स्थापित करोड़ होवे। स्टैंड रे चारों पाया रे नीचे पानी सु भरोड़ी प्याल्या रखी जावे, जिके रे कारण कीड़िया आदि जीव जिगह मौन ग्रह में प्रवेश को नहीं कर पावे। मधुमक्खी पालन में उपयुक्त सहायक उपकरण और भी है, जिया मुंह रक्षक जाली। इरो प्रयोग मौन पालक रो चेहरो पूरी तरह ढकोड़ो रवे। शहद निष्कासन वृद्धि आदि रे कार्य रे समय श्रमिक ने डंक कोनी लाग सके और श्रमिक रो बचाव आ जाली करे। मोम छत्तादार और प्राकृतिक मोम सु बनोड़ो पट्टी नुमा आकृति रो होवे मधुमक्खी पालन रे वास्ते रो काम में आवे। मधुमक्खी पालन में जब नए छत्ता रो निर्माण होवे तो इसु बनोड़ी चौखट री झीरी में फिट कर और तार रे आधार दे दियो जावे। ई पर बनोड़ा छत्ता ज्यादा मजबूत होवे और मधु निष्कासन रे समय टूटे कोनी। कृत्रिम

0: जन पात्र ओ आयताकार लोहे रो बनोड़ो एक पात्र होवे। सिंजा रे समय पराग और मरकंद प्रचुर मात्रा में नहीं मिलने री अवस्था में छत्ता धारा रो रो कागज में लपेट सुरक्षित राख देनो चाहिए। ताना कपड़े और रबड़ दोनों रा हो सके ढकने रे कारण मधुमक्खिया रो प्रकोप हाथ पर कोनी हो पावे। तो मधुमक्खी पालन वास्ते आपने सावधानियां भी रखनी होवे और नई नई जिकी विद्या है बिया ने भी अपनानो होवे। बीरे सू अगर आप मधुमक्खी रो पालन करा तो वो शहद जिको है बाजार में एक तो बहुत चोखो बिके। सागे सागे अगर खेत और आसपास मधुमक्खियां होवे तो वे परागण में भी फायदा पहुंचावे और अपनी फसल ने नुकसान होने से भी बचावे।
1: ये था कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था मधुमक्खी पालन। वाचक स्वर था श्री अश्विनी व्यास का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन।

विषय था मधुमक्खी पालन। वाचक स्वर था श्री अश्विनी व्यास का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है मातृत्व दिवस। माँ वो शख्स है जो खुद अधूरी नींद में रहकर हमारे सपनों को पूरा करती है, जो अपने हिस्से की खुशियां काट कर हमारे चेहरे पर मुस्कान सजाती है, हमारी हार में भी हमसे ज्यादा भरोसा रखती है। वही माँ होती है और एक आम भारतीय घर की माँ किसी सुपर हीरो से कम नहीं होती। जी हाँ श्रोताओं, एक माँ का प्यार वह गहरा बिना शर्त स्नेह है जो एक माँ अपने बच्चे को दिखाती है। श्रोताओं, आज है मातृत्व दिवस, इसी अवसर पर हमें अपनी माता को कुछ न कुछ सम्मान या धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी होता है। यह धन्यवाद और सम्मान हम उसे कैसे दे सकते हैं? उसे देने के लिए हमें उनके जो भी काम है उसमें मदद करनी चाहिए। यदि वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती है तो हमें उनके लिए सुबह जल्दी उठकर उनके लिए एक कप चाय बनाकर देनी चाहिए। हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा तोहफा माँ को दे, कुछ ऐसा कुछ करें जिससे माँ हमारी खुश हो, लेकिन माँ ऐसे छोटे छोटे कामों से भी हमारे लिए खुश हो जाती है। माँ का जो प्यार है हमें मजबूत बनाता है और हर बच्चे के चेहरे पे जो खुशी आती है वो माँ के प्यार से ही आती है। श्रोताओं, हम देखते हैं कि हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें बोलना, चलना, हंसना, रोना सब सिखाती है, और हमें जीवन के उस पड़ाव तक अपनी माँ का साथ महसूस होता है जब तक वो हमारे साथ होती हैं, और बाद में भी हमारे जो भी विचार हैं, जो भी हमारे मन की भावनाएं हैं, वो सब हमारी माँ की देन होती है। हमें इस दुनिया में लाने वाली ही हमारी माँ होती है। हमें अपनी माँ का ही नहीं, अपने परिवार के सब बड़े वृद्धजन जो भी हैं सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ वो है जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करती है और निस्वार्थ हमारे लिए वो सब करती है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। हम कई बार उनके कुछ करने से नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन हमें बाद में वो चीज़ समझ में आती है कि जो उन्होंने किया वो हमारे लिए अच्छा था, और इसी नाराज़गी को हम कई टाइम लगातार निकाल देते हैं, तो फिर जब हमें जब समझ में आता है तो कई बार समय निकल चुका होता है, तो हमें अफसोस का भी मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए हमारे बड़े जो हमारे लिए करते हैं उसे हमेशा अपनी सर आँखों पर रखना चाहिए, और उस चीज़ को, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को जो हमारी माँ ने हमारे लिए सहा है उसको हमेशा समझना चाहिए। जब हम देखते कि जब हम छोटे थे तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपनी माँ की ज़रूरत पड़ती थी, और उस ज़रूरत को हमारी माँ ने हमारे लिए पूरा भी किया है। ये नहीं है कि उसने अपने किसी काम के लिए हमारे काम को छोड़ दिया, उन्होंने हमेशा हमारा काम पहले किया है। तो हमें भी आज वो जब इस उम्र में है या इस तकलीफ़ में है, तो हमें भी अपने काम को छोड़कर पहले उनको समय देना चाहिए। यही नहीं कि साल में एक दिन आता है, उस दिन हमने अपने माँ के कुछ काम कर दिए और उनको खुश कर दिया, या उन्हें कुछ धन्यवाद के लिए कुछ गिफ्ट दे दिया, या ऐसा कोई काम कर दिया। नहीं, हमें रोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे उनके चेहरे पे मुस्कान आए, उनकी जो अंदर की खुशी है वो हमारे लिए व्यक्त हो, हमारे जो विचार हैं उनके लिए वो उनको मालूम होने चाहिए कि हम उनको किस तरह से खुश कर रहे हैं, और वो उनके जो काम है हम करके उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए जो किया उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसका कुछ अंश हम आपके लिए ज़रूर कर सकते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए। हमें इस दुनिया में लाने वाली हमारी माँ है, वो हमसे प्यार करती है लेकिन वो कोई शर्त नहीं रखती।

वो निस्वार्थ हमारे लिए वो सब करती है जो उन्हें करना चाहिए। वो चाहें तो उसमें भी कमी कर सकती है, लेकिन कभी नहीं करती। हम ज़रूर माँ के कहे हुए काम को टाल सकते हैं, लेकिन माँ ने हमारे काम को कभी नहीं टाला। और शायद हम सब ये चीज़ अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई बार कई गलत विचारों की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है परिवार में, या ऐसी बातें हो जाती है जिससे हम उनको कुछ कड़वा बोल देते हैं, लेकिन हमें उस टाइम एहसास नहीं होता। उसका एहसास कुछ समय बाद होता है, जब तक शायद समय निकल चुका होता है। इसीलिए हमें उस समय को कभी निकलने नहीं देना, और उनके बोले हुए वचन को हमेशा अपनी सर आँखों पर रखना, क्योंकि माँ हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगी और अच्छा ही करेगी। हमें कभी भी उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। हमारा जो जीवन है उन्हीं की देन है, तो उनको हमेशा ये जीवन समर्पित रहना ही चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, माँ के नाम।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे मातृत्व दिवस की। माँ ये है जो हमें अपने जीवन में अनुशासन सिखाती है। अनुशासन वह आधार है जो हमारे पूरे जीवन के लक्ष्य को बना देता है। यदि हम अनुशासन से चलते हैं, अनुशासन से अपने पूरे जीवन को चलाते हैं, तो हमारा जीवन सफल बनता है। मानव जीवन का वह आधार है जो सफलता और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है, अनुशासन। यह केवल नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की एक कला भी है। श्रोताओं, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन, लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच एक इस तरह का सेतु बनाना होता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ सकें और उसमें हमें मदद मिल सके। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हमें अपने कार्यों को अनुशासित करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम कार्यों को समय से पूरा करते हैं या किसी भी तरह की समय की बर्बादी नहीं करके अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, तो यह भी एक अनुशासन का ही अंग है। देखिए श्रोताओं, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपने जो भी दिनचर्या के काम है उन्हें फटाफट करने के बाद हम जब ऑफिस जाते हैं और अपना काम समय से पूरा कर लेते हैं, तो हमें भागदौड़ नहीं रहती। लेकिन यही अगर हम 10 मिनट लेट उठें या अपने कार्य को संयोजित तरीके से ना करें, तो हमारा सारा समय निकल जाता है और हर काम को हमें जल्दबाजी में करना पड़ता है। इसीलिए समय से जो काम हम कर लेते हैं, उसकी बराबरी हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते। हर चीज़ एक समय के हिसाब से ही पूरी होती है। उसी तरह उस समय को हमें समायोजित करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस समय का हम सदुपयोग कर सकें। क्योंकि यदि हम समय से चलेंगे, तो हर काम को समय से पूरा कर लेंगे। श्रोताओं, हमारे लिए भी ज़रूरी है, पढ़ाई करने वाले छात्रों के भी लिए ज़रूरी है, और जो काम करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। यदि बच्चे समय से पढ़ाई करते हैं और समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, तो उनके जो जीवन है वो भी सार्थक।

हो जाता है, क्योंकि यदि समय से, यानी जैसे बच्चे रात को कई बार 12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, और जो सुबह की पढ़ाई होती है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। सुबह यदि वो 4 बजे उठकर पढ़ते हैं तो उनकी जो पढ़ाई है वो उनके ज़्यादा समझ में आती है, और उस समय मन भी उनका शांत होता है। लेकिन आजकल का जो टाइम है, बच्चे रात को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, सुबह जल्दी उठकर उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ इस चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए कि उनको सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ना चाहिए, ताकि उनका जो समय है वो नियोजित हो सके और वो जो काम करना चाहते हैं वो समय से पूरा हो सके। श्रोताओं, यदि हम समय पर उठते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो हमारे जो मानसिक तनाव या किसी भी तरह की हमारे जो चिंता है उसको हम कम कर सकते हैं, और अनुशासन से ही हम ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं, और अपने जो मन पर और जो शरीर पर हम नियंत्रण है या बुरी आदतों पर नियंत्रण है वो अनुशासन से ही हम पा सकते हैं। श्रोताओं, इस अनुशासन को बनाने के लिए सबसे पहले समय पर उठना, व्यायाम करना और अपने जो भी ज़रूरी काम है उन्हें समय पर पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो है ना कि जब हम अनुशासन से चलते हैं तो हमारा जो भी काम है वो समय से पूरा हो जाता है, और ये अनुशासन हमें सीखना बहुत ज़रूरी भी होता है हमारे हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए, हर समय के लिए।

श्रोताओं, व्यक्ति के चरित्र निर्माण की वह प्रक्रिया है नैतिक मूल्य, जो उसे सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती है। यह केवल व्यक्ति की सफलता के लिए बल्कि एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के निर्माण के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। श्रोताओं, माता पिता जो होते हैं उनके व्यवहार को देखकर ही बच्चे दयालु, ईमानदार और अच्छे गुण सीखते हैं। यदि घर का व्यवहार अच्छा ना हो तो बच्चों पे उसका बहुत बुरा फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके जो शिक्षक होते हैं वो उनके रोल मॉडल बनते हैं। छात्रों के व्यवहार और दृष्टिकोण की गहराई को वह बहुत प्रभावित करते हैं। शिक्षक उन्हें जो सिखाएगा वही उनके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। श्रोताओं, इसके साथ साथ हमें बच्चों को पंचतंत्र, रामायण और महात्माओं की जीवनियाँ, सत्य, साहस और उनकी जो करुणा है, उनके गुणों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। उनकी जो कहानियां हैं उनको सुनने के बाद उनके मन में साहस, पराक्रम और ये सब चीज़ें प्रकट होती है, जिससे आगे आने वाले जीवन में उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो समय पर सही मार्गदर्शन के साथ चलेंगे। और जहाँ तक हो बच्चों को कुछ इस तरह की किताबें भी देनी चाहिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत, जिससे उन्हें जीवन के जो मूल्य हैं उनका संदेश मिल सके कि हमें हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत को ही देखना होता है। हमें कभी बुरे कार्य नहीं करने, हमें अच्छे कार्य ही करने होते हैं। अपनी गलतियों को हमेशा स्वीकार करना और हमेशा सच का साथ देना ही हमारा नैतिक मूल्य होता है। यदि हम सच के साथ चलेंगे तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। दूसरे को दर्द को समझना और उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाना ही भी हमारा एक नैतिक मूल्य होता है। श्रोताओं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करने के साथ साथ ईमानदारी के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरों को समझना, उनकी मदद करना और अपने भी जीवन में यदि कोई हमारी मदद कर रहा है तो उसको भी उसका आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे अगर हमारे साथ कुछ गलती कर भी दे तो उसको क्षमा करना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। श्रोताओं, जिस समाज में नियम मर्यादा का पालन होता है वहाँ नागरिकों में भी स्वाभाविक रूप से नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। नैतिक मूल्यों का विकास एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाला अभ्यास है। यह व्यक्ति को आंतरिक शक्ति देता है जिससे वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है।

श्रोताओं, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ चालान से बचने के लिए ही हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें हमारी जो दिशा निर्देशित है उसे ही लेकर चलना चाहिए, और उसके साथ साथ यदि कोई पैदल जा रहा है तो उसे भी रास्ता देना ज़रूरी होता है, और जितनी हमारी स्पीड है उसे उस हिसाब से ही मैनेज रखना चाहिए ताकि हम किसी भी प्रकार की समस्या में खुद भी ना फंसें और किसी और को भी ना फंसा सकें। इसके अलावा हमें अपनी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। हमें हेलमेट का उपयोग करना ज़रूरी है। हेलमेट का यदि हम उपयोग करते हैं तो हम 80% तक अपने आप को जोखिम में डालने से बच सकते हैं। यदि हम अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर हम किसी और की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते हैं। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर ही चलनी चाहिए, और हम अपनी सुरक्षा यदि कर लेते हैं तो हमें किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। अपनी स्पीड को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, और बेवजह शॉर्टकट के चक्कर में या फिर ट्रैफिक लाइट से बचने के चक्कर में या पुलिस वालों से बचने के चक्कर में हमें अपनी गाड़ी को स्पीड से नहीं भगाना चाहिए और गलत जगह से कट लेकर नहीं निकलना चाहिए। यदि हमें अपने गंतव्य पर पहुंचना है और सही सलामत पहुंचना है तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें हेलमेट लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम सड़क पर चल रहे हैं और सामने से एम्बुलेंस आ रही है तो हमें उसे रास्ता देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि हम इस तरह के कार्य को करते हैं तो हम समाज का एक हिस्सा बन सकते हैं। अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड में ना चलाएं और दूसरों को भी आने जाने के लिए रास्ता दें, और किसी भी तरह के शॉर्टकट का उपयोग ना करें, और अपने बच्चों को इन सब सावधानियों को समझाएं ताकि वह भी अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो इन नियमों का पालन करें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें खुद तो सचेत रहना है, अपने बच्चों को भी इसके लिए सचेत रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही सुप्रभात कार्यक्रम से मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने, स्वर सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर का है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

लीजिए, सुनिए क्रांति फिल्म से ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का है। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिल

0: मलाड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगास्वामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगास्वामी 13 मई को पुदुचेरी

0: नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्रीरंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्रीरंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्रीरंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
6: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी

0: समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। डिजिटल शिक्षण किसे कहते हैं? कोई भी शिक्षण अधिगम गतिविधि जिसमें निर्देश देने के लिए तथा अधिगम को सुगम बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है, वह डिजिटल शिक्षण अधिगम कहलाता है। इसलिए डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन ऐसे कोई भी डिजिटल उपकरण है जो शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। डिजिटल यंत्र एवं उपकरण जो शिक्षण अधिगम में उपयोग करते हैं उनमें मुख्य रूप से कंप्यूटर्स, ई बुक्स, डिजिटल बुक्स, टैबलेट, ई कंटेंट, ई लर्निंग, ई मेल, चैट, ऑनलाइन टीचिंग, ई कॉमर्स, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, वर्चुअल रियलिटी, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, सेमिनार, टेलीकॉन्फ्रेंस आदि यंत्र एवं उपकरण इसमें शामिल है। इनके द्वारा डिजिटल शिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता है जो निश्चित अवधि में घर बैठे विद्यार्थी सीख सकते हैं। आईसीटी के व्यापक उपयोग के साथ शिक्षकों द्वारा आधुनिक डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है जो विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रियाओं में प्रभावी तरीके से शामिल होने में सक्षम बना रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में नए डिजिटल यंत्रों द्वारा एक बड़ी जनसंख्या तक अधिगम विषय वस्तु पहुँचा पाने के लाभ के कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए पारंपरिक तथा सूचना और संचार तकनीकी आईसीटी पर आधारित दोनों शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग शैक्षिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। पूरा विश्व जब एक ओर संकट से जूझ रहा था तभी दूसरी ओर पढ़ने पढ़ाने वाले सतत शिक्षा से करते जा रहे थे। इस समस्या से निजात राहत पाने के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली यानी डिजिटल शिक्षण प्रणाली बहुत ही मजबूत कड़ी के रूप में बाहर निकल कर आई और देश की संस्थाएं यूजीसी व मानव संसाधन विकास मंत्रालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया। जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान में यूजीसी जो सबसे बड़ी संस्था है उसके द्वारा नेट की एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कराई जाती है जिसमें लाखों विद्यार्थी एक साथ भाग ले सकते हैं। और नई डिजिटल शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 में भी ऑनलाइन शिक्षण पर काफ़ी जोर दिया गया है कि जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू की गई है उसमें ऑनलाइन शिक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के बिंदु संख्या 24 के शीर्षक ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना में ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के साथ साथ पायलट अध्ययन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण, डिजिटल अंतर को कम करना, वर्चुअल लैब की स्थापना करना को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इस बिंदु के प्रारंभ में कहा गया है कि नई परिस्थितियों और वास्तविकताओं के लिए नई पहले अपेक्षित है। संक्रामक रोगों तथा वैश्विक महामारियों में हुई वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हो वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार रहें। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित हो। वर्तमान युग में अध्ययन अध्यापन के तौर तरीकों में परिवर्तन हो रहा है। आज से कुछ समय पूर्व तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्षात्कार के लिए किसी तकनीकी एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में डिजिटल शिक्षा का इतना प्रभाव बढ़ा है कि जहां प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी भी इन सभी तकनीकियों से भलीभांति परिचित ही नहीं बल्कि उसका उपयोग भी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने एक संबोधन में कहा था कि हमें आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। सत्य भी है क्योंकि व्यक्ति जब मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो वह आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ई पाठशाला, स्वयं तथा मूक आदि की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इनकी स्थापना के समय मंत्रालय ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर COVID-19 कोरोना महामारी व लॉकडाउन की स्थिति में मंत्रालय द्वारा एडवांस में किए गए कार्य मील के पत्थर साबित होंगे। जो कार्य किए उनमें नंबर एक था स्वयं शिक्षण पोर्टल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से तैयार किया गया एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है। इस पर सारी शिक्षण सामग्री उपलब्ध रहती है। नंबर दो था MOOC। MOOC शब्द का विस्तृत रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। MOOC बहुत ही
बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इंटरनेट पर बिना शुल्क के उपलब्ध करवाए जाने वाले स्टडी कोर्सेज हैं, लेकिन कोर्स मल्टीरियल के बारे में इस तरह के किसी भी शक को दूर करने के लिए या मूक

0: प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तुत इन कोर्सेज की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए आपको शायद ये जानकर अच्छा लगेगा कि कोर्सेजेज विश्व के ज़्यादा मशहूर विश्वविद्यालय द्वारा भी ऑफर किए जा रहे हैं कि MOOC पोर्टल से आप शिक्षण सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 ई पाठशाला। शैक्षणिक योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा मुख्य रूप से विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में केंद्र व राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह देती है। इस पोर्टल पर NCERT की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन्हें देश विदेश के विद्यार्थी अपने कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन में पढ़ सकते हैं। इसमें ऑडियो तथा वीडियो की भी सुविधा दी गई है। डिजिटल शिक्षण के युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है दीक्षा। इसका संचालन भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। इस दीक्षा पोर्टल पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व NCERT की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की साथ ही अनेक राज्यों की अलग अलग भाषाओं में बनाई गई 75,000 से अधिक ज़्यादा ई बुक्स उपलब्ध हैं जिन्हें डाउनलोड करके विद्यार्थी घर बैठे शिक्षण सामग्री का लाभ उठा रहा है। डिजिटल शिक्षा के लाभ। डिजिटल शिक्षा के वर्तमान में क्या क्या लाभ हैं? नंबर 1 सहजता और समय की बचत। दूसरा है सहयोगी और रोचक शिक्षा। नंबर 3 है विविधता में वृद्धि। नंबर 4 अध्ययन सामग्री की उपलब्धता। नंबर 5 है आत्म प्रेरित व जवाबदेही बनाना। अब विविधता में वृद्धि। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होती है जो विद्यार्थियों की रुचि और अभिरुचियों के आधार पर चयन की जा सकती है। अध्ययन सामग्री की उपलब्धता। इंटरनेट के माध्यम से विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है जिससे विद्यार्थियों की समझ में वृद्धि होती है। सहयोगी और रोचक शिक्षा। डिजिटल माध्यम विद्यार्थियों को रोचक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता देता है जैसे ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स आदि के माध्यम से सिखाना। सहजता और समय की बचत। डिजिटल माध्यम से विद्यार्थी घर पर ही अध्ययन कर सकते हैं जिससे विद्यार्थियों की यातायात की और समय की बचत होती है और पैसे की बचत होती है। विद्यार्थियों को आत्म प्रेरित व जवाबदेही बनाता है। डिजिटल शिक्षा। डिजिटल लर्निंग विद्यार्थियों को एक बार में विभिन्न आकर्षक तरीके से सिखा रही है। ये मुख्य रूप से सहकर्मी शिक्षा टीम वर्क समस्या समाधान रोल प्लेइंग और कहानी सुनाता है। इस इंटरैक्टिव और यादगार मॉडल के माध्यम से छात्रों का शिक्षण सामग्री के साथ बेहतर संबंध हो रहा है जिससे उनकी प्रेरणा और जवाबदेही में सुधार हो रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। भारत में 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल में 260 मिलियन से अधिक छात्र है। डिजिटल शिक्षा की हमने बात करी तो इसके लाभ के साथ हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ हैं जिनमें मुख्य रूप से हैं तकनीकी समस्याएं। डिजिटल शिक्षा को लागू करते समय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्या उत्पन्न हो सकती है जो विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित कर सकती है। एक है सामाजिक संवाद। डिजिटल शिक्षा में विद्यार्थियों का सामाजिक संवाद कम हो सकता है जिससे उनका सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य समस्या। अधिक समय तक डिजिटल शिक्षा में स्क्रीन के सामने बैठने से विद्यार्थी की आँखों और पृष्ठों को होने वाली समस्याएँ हो सकती है। डिजिटल शिक्षा एक प्रगतिशील दिशा है जो विद्यार्थियों को न केवल अध्ययन की सहभागिता प्रदान करती है बल्कि उन्हें तकनीकी रूपों में भी सिखाने का अवसर देती है। इसमें अनेक चुनौतियों का सामना सावधानीपूर्वक तरीके से किया जा सकता है। साथ ही हमें डिजिटल शिक्षा का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए व विद्यार्थियों को सामाजिक शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आपसे कदम उठाने चाहिए। वर्तमान युग में ऑनलाइन शिक्षण या ई लर्निंग का क्रेज 7वें आसमान पर है। लॉकडाउन COVID-19 के समय प्रारंभ हुई ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था ई लर्निंग अब भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति 2020 का एक और महत्वपूर्ण भाग हो गया है। सरकार इस दिशा में नई शिक्षा नीति के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ साथ तकनीकी विषय को गति प्रदान करेगी जिससे देश के कोने कोने तक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सम्यक विकास के उद्देश्य से लाई गई यह नई शिक्षा नीति मैकाले द्वारा प्रारंभ मानसिक गुलामी को समाप्त करने का कार्य करेगी। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से वर्तमान में पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी घर बैठकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं और इसलिए वर्तमान युग में डिजिटल शिक्षा का बहुत महत्व है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता डिजिटल युग में शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार थे श्री मोहर सिंह मीणा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई

0: को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्री सुब्रमणि पदभार ग्रहण करने के साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। केंद्र ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख भी नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपये की है। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से ये आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 60 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और परामर्शदाता भाग लेंगे। ये परियोजना इस साल जुलाई से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भिवाड़ी में जलभराव की समस्या के निवारण के लिए 34 एमएलडी का एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके अलावा सीईटीपी से पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डालने का काम भी जल्द शुरू होगा और नेशनल हाईवे 919 की समस्या का भी समाधान जल्द किया जाएगा। श्री यादव कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे अलवर जिले के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।
1: भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। हमने 34 एमएलडी का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का, उसको कंप्लीट कर लिया है और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है, इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे। पानी को निकालने के लिए जो पाइपलाइन का विषय है उसकी भी पैसा आवंटन करा दिया है और उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा के ये काम हम करेंगे। और जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी डीपीआर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो इसका 2/3 हिस्सा तो अब उद्घाटन हो जाएगा, 1/3 हिस्से का टेंडर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ एनएचआई से भी हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने का काम।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के एक दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे पुष्कर क्षेत्र के कडेल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे। चौपाल में श्री शर्मा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री का कल गांव का भ्रमण कर स्थानीय व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेश में राजीनामे के जरिए कुल 46,91,311 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 7,15,00,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उपस्थित पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को तय किया जाता है जिसे पक्षकार का समय और दोनों बचाया जा सके। कई पक्षकारों के बीच सिविल और छोटे आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे आपसी राजीनामे से सुलझाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने

0: बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। मातृत्व दिवस पर पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज मदर्स डे के अवसर पर पूरा प्रदेश अपनी माताओं के सम्मान में भावनाओं के रंगों से सराबोर है। कहीं बच्चे अपनी माँ को उपहार दे रहे हैं, तो कहीं माँ के सम्मान में कार्यक्रम और समारोह रखे जा रहे हैं। माँ वह कविता है जिसे शब्दों में पूरा नहीं लिखा जा सकता। वह घर की धड़कन है जो अपने सपनों को चुपचाप बच्चों की मुस्कान में बुन देती है। उसकी दुआएं जीवन की हर कठिन राह को आसान बना देती हैं। आज का दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि उस अनकहे प्रेम को महसूस करने का अवसर है जो माँ हर दिन बिना किसी अपेक्षा के हमें देती है। आइए इस विशेष अवसर पर हम अपनी माताओं को केवल धन्यवाद ही नहीं, बल्कि सम्मान, समय और अपनापन भी दें। प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीख।
0: प्रदेश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी जिलों में लगातार मौसम शुष्क बने रहने से भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। वहां अधिकतम तापमान एक बार फिर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कल बाड़मेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर, बीकानेर, फलौदी और चित्तौड़गढ़ में पारा 43 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ आंधी चली और बारिश हुई। नागौर के मेड़ता में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
2: आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

ये था कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश करेंगी अन्विती गोस्वामी।

जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के मुकुल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अन्विति दीदी। कैसे हैं आप सब? क्या कहा? ओहो, आज तो रविवार मना रहे हैं। समझी, रविवार के दिन तो भाई हम सभी बड़े ही आराम के मूड में होते हैं, है ना? पता है बच्चों, मेरा भी सुबह से कुछ ऐसा ही हाल था। आराम से उठना, कई देर तक एक ही जगह बैठे रहना, वो थोड़ी थोड़ी लेजी वाली फीलिंग होती है ना वो। लेकिन तभी अचानक याद आया कि अरे, आज तो आप सबसे मिलने का दिन है। बस फिर क्या था, सारी थकान जैसे पल भर में ही छूमंतर हो गई और आपसे मिलने के नाम से ही मैं उठ खड़ी हुई और मैं होने लगी जल्दी जल्दी तैयार। लेकिन ये क्या, हड़बड़ी में होने लगी ना गड़बड़ी। कभी घड़ी ना मिले तो कभी चश्मा गायब और कभी रुमाल नहीं मिल रहा।

और मैं सोचने लगी कि काश मैंने आलस ना किया होता, पर अब हो भी क्या सकता था। मैं सोचने लगी कि काश कोई जादूगर आ जाए और मेरी खोई हुई चीज़ें मुझसे मिलवा दे। और तभी पता है क्या हुआ, एक जादू सा हुआ। कमरे में एंट्री हुई मेरी मम्मी की, और मैंने जैसे ही अपनी परेशानी बताई और वैसे ही मम्मी ने बस कमरे में एक नज़र दौड़ाई, चुटकियों में सब कुछ चीज़ें ढूंढ के मेरे हाथों में थमाई। और प्यारे बच्चों, आप हंसोगे कि मम्मी ने चश्मा कहाँ से ढूंढ निकाला मेरा, कहाँ से पता है, मेरे सर के ऊपर से ही। लेकिन हाँ, मीठी सी डपट के साथ, समय के साथ चलने और अपना सामान व्यवस्थित करने की भी हिदायत मम्मी ने दे ही डाली। लेकिन पता है बच्चों, उस डांट में भी प्यार ही छुपा हुआ था। और जैसे मैं ही तैयार होकर जाने को हुई तो मेरा फेवरेट नाश्ता और ठंडा ठंडा दूध पहले से ही मम्मी ने रेडी कर रखा था। भाई माँ हैं, खाली पेट थोड़ी जाने देंगी ना बच्चे को, है ना। सच में बच्चों, कितनी अच्छी होती है ना माँ। ऐसा लगता है ना कि माँ के पास कोई इनविजिबल सुपर पावर हो, और ये जो सुपर पावर है ना, वो हमारी खोई हुई चीज़ें ढूंढने की ही नहीं होती माँ के पास, बल्कि माँ के पास वो ताकत होती है जो हमारे चेहरे की मुस्कान पढ़ लेती है, आंखों की उदासी भी समझ लेती है। आपने भी महसूस किया होगा ना बच्चों, कि जब हम खुश होते हैं तो सबसे पहले किसे याद करते हैं? बिल्कुल सही कहा, अपनी मम्मी को। और कभी चोट लग जाए या थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो, बिल्कुल सही कहा, बस एक ही नाम निकलता है मुंह से, माँ। और माँ भी बस अपने आंचल से थोड़ी सी फूंक मार देती है और हमारा सारा दर्द गायब हो जाता है, है ना बच्चों। माँ ही होती है हमारी पहली दोस्त, जो हर सुख में हमारे साथ हंसती है, हर दुख में हमें संभालती है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी हर परेशानी में सबसे पहले होती है माँ। और बच्चों, आज का दिन यानी कि मई का दूसरा रविवार एक ऐसे दिन के रूप में हम मना रहे हैं जो हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी में माँ की कितनी खास जगह है। जी हाँ बच्चों, मई महीने का दूसरा रविवार मनाया जाता है मदर्स डे के रूप में। वैसे तो माँ के लिए हर दिन ही होना चाहिए बच्चों, लेकिन ये खास दिन हमें मौका देता है कि हम उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दे सकें। भाई मैं तो अपनी मम्मी को मदर्स डे विश कर आई हूँ। आप भी जल्दी से दौड़कर मम्मी के पास जाइए, प्यार से उन्हें गले लगाइए और बोलिए हैप्पी मदर्स डे। और अब हम सब मिलकर सुनते हैं प्यारी माँ के लिए ये प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, मम्मी को हैप्पी मदर्स डे तो विश कराए ना आप, और अब ये सोचो कि आज के दिन मम्मी के लिए कैसे स्पेशल बनाने वाले हो आप। सोचो सोचो। सोच लिया? अच्छा, कोई कलर पेंसिल लेकर सुंदर सा कार्ड बना रहा है, बहुत अच्छे। कोई मम्मी की हेल्प करने की प्लानिंग में है, नॉट बैड। और कोई तो बस आज शरारत कम करने का वादा कर रहा होगा, है ना? बहुत अच्छा सोचा, वेरी गुड। क्या कहा? मैंने क्या सोचा है? सच बताऊं बच्चों, मैंने भी आप ही की तरह माँ के लिए कुछ खास सोचा है। नहीं नहीं, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ना ही कोई बड़ी सी वस्तु है, बस मेरे दिल से निकले हुए प्यारे से शब्द हैं। बिल्कुल सही पहचाना, मैं लिखूंगी एक प्यारी सी कविता, सुनना चाहोगे? तो सुनो। माँ थकती नहीं, माँ रुकती नहीं, उसकी बेजोड़ हिम्मत को सलाम लिखूंगी। एक कविता मैं माँ के नाम लिखूंगी। माँ जमी में जन्नत है, माँ जुबा की मन्नत है, माँ देवी है, खुदा है, माँ को भगवान लिखूंगी। एक कविता मैं माँ के नाम लिखूंगी। माँ आरती, माँ ही पूजा, उसके जैसा ना कोई दूजा। माँ ही सारी दुनिया, माँ को जहान लिखूंगी। एक कविता मैं माँ के नाम लिखूंगी। माँ शोहरत, माँ सबसे बड़ी दौलत है, माँ ही इज्जत, माँ को ईमान लिखूंगी। एक कविता मैं माँ के नाम लिखूंगी। खुदा का सबसे अनमोल खजाना है, माँ हर बच्चे का सपना है, माँ को खुदा का सबसे सुंदर इनाम लिखूंगी। एक कविता मैं माँ के नाम लिखूंगी। वो लोरी, वो गाने, वो प्यारे तराने, बचपन में सुनाए उसके किस्से तमाम लिखूंगी। एक कविता मैं माँ के नाम लिखूंगी। माँ की गोद में गजब की राहत है, सिर आंचल तले रखकर सोने की चाहत है, माँ के कदमों में अपनी सुबह और शाम लिखूंगी। एक कविता मैं माँ के नाम लिखूंगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कविता? माँ को तो पसंद आ जाएगी ना, बताइए बताइए कैसी लगी? क्या कहा? बहुत पसंद आई। अरे वाह, आपको पसंद आई है तो अब मुझे पूरा यकीन है कि माँ को भी ज़रूर पसंद आएगी। वैसे भी माँ के लिए तो उसके बच्चे की हर बात निराली होती है ना, चाहे वो छोटी सी कविता हो या प्यारा सा तोहफा हो, है ना? और अब क्यों ना माँ और बच्चे के इस प्यारे से रिश्ते के, प्यारे से एहसास को इस खूबसूरत गीत के साथ और भी खास बनाया जाए।

सुना ना बच्चों, ये प्यारा सा गीत कितना अच्छा संदेश दे रहा था ना, माँ और बच्चे के बीच गहरे प्यार का संदेश। और बच्चों, जब माँ अपने बच्चे पर भरोसा करती है ना, तो वही भरोसा उसे ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाता है। और बच्चों, माँ के इसी प्यार और भरोसे की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन और उनकी माँ की कहानी। बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। बिल्कुल सही पहचाना, वही जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतने महान वैज्ञानिक बनने के पीछे एक बहुत खास वजह है, उनकी माँ का विश्वास। जी हाँ बच्चों, जब एडिसन छोटे थे ना, तो एक दिन वो स्कूल से एक चिट्ठी लेकर घर आए। उन्होंने अपनी चिट्ठी माँ को थमाते हुए कहा कि माँ, टीचर ने कहा है कि ये चिट्ठी बस आप ही पढ़ें। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और एडिसन ने पूछा कि क्या लिखा है माँ चिट्ठी में। तो माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं, तो कृपया आप इसे खुद ही पढ़ाएं। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और वही बच्चा बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बना, जिसने दुनिया को रोशनी देने वाला बल्ब दिया। बहुत सालों बाद एडिसन को वही पुरानी चिट्ठी मिली और पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर

कमजोर है, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। और उस दिन बच्चों एडिसन को समझ आया कि उनकी माँ ने उन्हें कभी भी कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि उन पर भरोसा किया और माँ के इसी विश्वास ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। बच्चों, माँ कभी ये नहीं देखती कि हम कितनी बार गिरे, वो हमेशा ये मानती है कि हम उठकर फिर से कोशिश करेंगे। देखा होगा ना आपने, हमारी परीक्षाओं के दिनों में रात रात भर हमारे साथ जाकर हमारा हौसला बढ़ाती हैं हमारी मम्मी, है ना? उनका बस ये कहना कि तुम कर सकते हो, हम में हिम्मत बंधा जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों के तारे पर पूरा विश्वास जो है।

बच्चों, मेरी कविता में आपने सुना था ना कि माँ थकती नहीं, माँ रुकती नहीं, है ना? और ये बात सच भी है। अभी अगर आप चुपके से जाके देखोगे ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ काम लेके ज़रूर उसे पूरा कर रही होंगी, या फिर रसोई में आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने में लगी होंगी। लेकिन आज का दिन तो हमें माँ को स्पेशल फील कराना है ना, तो क्यों ना आज हम भी कहें कि माँ आज आप आराम करो, रसोई की कमान हम संभाल लेंगे। अरे अरे, डरो मत डरो मत, मैं कुछ भी मुश्किल रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मम्मी के लिए यम्मी सी मैंगो कुल्फी, वो भी बिना गैस जलाए। हाँ बच्चों, विदाउट फायर रेसिपी। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा दूध, आम का पल्प, थोड़ी सी चीनी, मलाई या फिर कंडेंस्ड मिल्क और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब सबसे पहले किसी भैया, दीदी या फिर पापा की हेल्प लेकर सभी चीज़ें इकट्ठी कर लो। फिर इन सबको मिक्स करके छोटे छोटे कप्स में या मोल्ड्स में डालकर फ्रिज में रख दो। अरे नहीं नहीं बार बार फ्रिज खोल कर चेक मत करना, नहीं तो फिर कुल्फी जमेगी नहीं। थोड़ा सा सब्र रखोगे ना तो कुछ ही घंटों में तैयार हो जाएगी मम्मी और

आप सब के लिए हाथों से बनी आपकी मैंगो कुल्फी। और मम्मी को जब ये प्यारा सा सरप्राइज़ मिलेगा ना, तो वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगी। और जब मम्मियों के लिए इतनी प्यारी सी कुल्फी बन रही है, तो एक प्यारा सा गाना तो बनता ही है ना, तो चलो वो हम आपको सुना देते हैं।

ध्यान रखता है। चीता मम्मी भी बहुत बहादुर होती है, बच्चों को शिकार करना, सुरक्षित रहना जो सिखाती है ना। तो ऐसी होती हैं मम्मियाँ, ये अपने बच्चों को बहुत तरह से सुरक्षित रखना सिखाती हैं। तो बच्चों चाहे इंसान हो या जानवर, माँ का प्यार हर जगह खास होता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ की ममता है सबसे निराली।

बच्चों, हम बात कर रहे हैं ना कि मम्मी हमारे लिए कितनी खास होती है, और आज मदर्स डे पर हम उन्हें खास महसूस भी करवा रहे हैं। आप जानते हैं बच्चों कि सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की मम्मियाँ भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो चलो आज आपको मिलवाती हूँ एनिमल किंगडम्स की कुछ सुपर मॉम से। सबसे पहले बात करते हैं पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू की मम्मी की। ये बर्फ में अपने बच्चों के लिए घर बनाती है और उन्हें ठंड से बचा कर रखती है। कितनी केयरिंग मम्मी है ना। अब हम मिलते हैं ओरंगउटान मम्मी से। इनके बच्चे कई साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं, जैसे कि खाना ढूंढना, पेड़ों पर रहना। और समुद्री ऊँट बिलाव की मम्मी जो होती है ना, वो अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लिपटा कर पानी में तैरती है। और कितनी प्यारी बात है ना, है ना। पता है हाथी की मम्मी भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं होती है। वो अपने बच्चे को बहुत ध्यान से रखती है और हाथियों का पूरा झुंड मिलकर बच्चे

तो बच्चों, आज की प्यारी प्यारी बातें यहीं खत्म होती हैं। अपनी मम्मी के साथ ढेर सारा समय बिताइए, उन्हें बताइए कि वो कितनी खास हैं। उन्हें खूब सारा प्यार कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। इसी प्यारे संदेश के साथ में आपकी अन्विति दीदी आपसे फिर मिलने के साथ लेती है विदा। जय हिंद।

ये था कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश कर रही थी अनविति गोस्वामी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट। स्वर अरिजीत सिंह का है, इस गीत को लिखा है कुमार ने और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

लीजिए कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है फन्ने खां, स्वर सुनिधि चौहान और दिव्या कपूर का है।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली वेल डन।
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो नया कैमरा नई लाइट्स।
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: लीजिए सुनिए दे दे प्यार दे। जी हाँ ये है फिल्म का नाम। इस फिल्म से ये गीत स्वर गैरी संधू और नेहा कक्कड़ के हैं।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी?
2: हाँ।
1: आ? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले?
1: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये गीत। स्वर अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और साहेब सबूरी के थे। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है यमला पगला दीवाना। स्वर अली परवेज मेहंदी, श्वेता पंडित, राहुल बी सेठ, महालक्ष्मी के हैं।

0: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है।
1: लीजिए, सुनिए विशाल ददलानी और रेखा भारद्वाज को। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

अभी आपने आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपर्दा की आवाज़ में फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत सुना। लीजिए अब सुनिए लुटेरा फिल्म का गीत। स्वर है

0: हिना फिल्म में लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

0: निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:05 हैं। श्रोता सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह दिन में 12:10 पर श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

दिन में 1:05 पर आप सुन सकेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। इसमें आज आप आधुनिक गृहिणी और मानसिक शांति विषय पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखें और छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी योजनाएं सहित पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार विषय पर भी बातचीत की जाएगी।

रात्रि 10 बजे श्रोता सुन सकेंगे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:40 पर जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। शाम 7 श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इसमें आज आप मौसम पूर्वानुमान सूचनाओं का महत्व विषय पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही कैच द रेन अभियान और किसान सम्मान निधि सहित पशु आहार में कैल्शियम की भूमिका विषय पर भी बातचीत की जाएगी। शाम 7:45 पर श्रोता सुन सकेंगे सुगम संगीत।

युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 पर। इसमें आज आप प्रदूषण को रोकने में हमारे योगदान विषय पर आज की बात सुनेंगे, साथ ही एड्रेलिन हार्मोन विषय पर लघु जानकारी दी जाएगी।

फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकेंगे दिन में 12:40 पर, दोपहर में 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि सकालीन सभा में रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर।

ये थी हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 होने वाले हैं। श्रोता सुनेंगे सिंधी में कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: पेश आयो खणी आवां जो पेंजो सिंधी प्रोग्राम सबनी बुधदरन के सीमा हिरानिया जो नमस्कार आज जे प्रोग्राम में पेश करे रहा आयो भिनरुला प्रोग्राम मुइजो घर मुइजो संसार जिया त सबनी के जानी आही कि आज आही मातृ दिवस त सबनी भिनरन के मातृ दिवस जियु वाधायु मातृ दिवस माना मदर्स डे हर साल मई महीने जे बे आतवार ते मलायो वेंदो आहे हिन ही करे हिन जी तारीखूं मटजंदी रहंदी आहिनि हिन ॾींहं जी शुरुआत अमेरिका में एना जर्विस पंहिंजी माउ खे यादि कंदे कई हुई धीरे धीरे हिन अभियान खे समर्थन मिलंदो रहियो ऐं 1914 में मदर्स डे खे अमेरिका में आधिकारिक तौर ते घोषित कयो वियो ही ख़ासि ॾींहुं माउ जे प्यार त्याग ऐं योगदान जे प्रति सम्मान ऐं आभार व्यक्त करण जो ॾींहुं आहे या मञियो वेंदो आहे अवसर मदर्स डे खे ख़ासि बनाइण जे लाइ वॾी योजनाउनि जी ज़रूरत न हूंदी आहे बस हिकु फ़ोन कॉल या गॾु वेही करे थोरो वक़्तु बिताइणु मिली करे हुन जी ई मनपसंद जी शइ ठाहिण या दिलि सां हिकु सचो धन्यवाद बि चवणु हिन ॾींहं खे यादगार बणाईंदो आहे त ही नंढी नंढियूं ॻाल्हियूं ई हिन ॾींहं खे ख़ासि बणाईंदियूं आहिनि त अचो सभई मिली करे दुनिया भर जी सभिनी माउनि जे लाइ आभार व्यक्त कयूं ऐं उन्हनि जे योगदान जे प्रति पंहिंजो सम्मान प्रकट कयूं त मुंहिंजो घर मुंहिंजो संसार प्रोग्राम में हिन ई विषय ते अॼु तव्हीं ॿुधंदा हिकु वार्ता तंहिंखां सवाइ गीत संगीत त पेश आहे हीअ वार्ता
1: वार्ताकार आहिनि गौरी देवी पेश आहे हीअ वार्ता
2: मां त जन्नत जी गुल थींदी आहे प्यार करण उन जो उसूल थींदो आहे दुनिया जो सॼो प्यार फिज़ूल आहे माँ जी हर दुआ क़बूल आहे दोस्तो अॼु मातृ दिवस आहे तव्हां सभिनि खे मातृ दिवस जूं वाधायूं हिकु माँ पंहिंजे ॿार जी पहिरीं मास्तर ऐं दोस्त थींदी आहे माँ जेतिरो नंढो अखर आहे उन जो महत्व ओतिरो ई वधीक आहे अॼु जो ॾींहुं दुनिया जी सभिनि माउरुनि

खे समर्पित आए कें मुखा पुछियो त स्वर्ग किथे आए मो मुस्कराईंदे हुए चयो त जें जे घर में मां आए उते ही स्वर्ग आए कें वडे माण्हूअ सही चयो कि मां जी दुआऊं मुंहिंजी मुसीबतुनि खां इन क़दुरु टकराईंदियूं आहिनि कि ज़माने जूं सभई बलाऊं उन जे कारे टीके सां घबराईंदियूं आहिनि विश्व जे सभिनि देशनि में अलॻि अलॻि तरीक़े सां मातृ दिवस मल्हायो वेंदो आहे सभिनि खां पहिरीं इहा परंपरा ग्रीस देश में चालू थी हुई उते खां पोइ धीरे धीरे हाणे पूरी दुनिया में इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे इन खे वर्तमान रूप में मल्हाइण जी शुरूआति 1907 में अमेरिका में थी हुई हर साल मई महीने जे ॿिए आर्तवार ते मातृ दिवस जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे इन खे मल्हाइण सां पंहिंजी माउनि जे प्रति श्रद्धा ऐं कृतज्ञता प्रकट कंदा आहियूं ऑस्ट्रेलिया में इन जो लंबो इतिहास रहियो आहे इन ॾींहुं उते माताउनि खे गुल ॾिया वेंदा आहिनि ऐं चर्च में वेंदा आहिनि बांग्लादेश में बि पश्चिमी देशनि जे रीति रिवाज जे प्रभाव वधण करे मल्हायो वेंदो आहे ब्राज़ील में इन ॾींहुं सभई पंहिंजी माताउनि खे उपहार ॾेई परिवार सां गॾु मल्हाईंदा आहिनि कनाडा में सभई घर में पंहिंजी माताउनि ऐं ॾाॾीअ खे उपहार ॾींदा आहिनि चीन में सभई माण्हू इन ॾींहुं पंहिंजी माताउनि लाइ लिलीअ ऐं कारनेशन जा गुल वठी ईंदा आहिनि मिश्र ऐं अरब जे देशनि में बि गानो ॻाए करे माउ जे प्रति सम्मान ऐं कृतज्ञता प्रकट कई वेंदी आहे फ्रांस में मदर्स डे प्रथम विश्व युद्ध जे टाइम खां वठी लोकप्रिय थियो हो उते जी सरकार वॾे परिवार जी माताउनि खे पुरस्कार ऐं कार्ड ॾींदी आहे मैक्सिको में पहिरीं इहो ॾींहुं कोन मल्हायो वेंदो हो पर हाणे हिन आधुनिक समय में माताउनि खे सम्मान ॾियण लाइ ॾाढे उत्साह सां मल्हायो वेंदो आहे उन ॾींहुं विशेष गीत ॻायो वेंदो आहे इन तरह नेपाल रूस स्पेन ऐं अमेरिका सां गॾु संसार जे अधिकांश देशनि में इहो ॾींहुं माउरुनि जे सम्मान में मल्हायो वेंदो आहे हर माउ पंहिंजे ॿार लाइ पूरी ज़िंदगी समर्पित रहंदी आहे माउ जे त्याग जी गहराई नापण कंहिं बि माण्हूअ लाइ संभव कोन आहे ऐं न ई पाण पंहिंजी माउ जे प्यार उपकार ऐं त्याग जो कर्ज़ु चुकाए सघूं था उहा पंहिंजे ॿार जा सभई हाव भाव ऐं ज़रूरतूं सम्झंदी आहे ऐं बिना के शर्त जे उन खे प्यार कंदी आहे उहा उन खे सही रस्ते ते वञण लाइ शिक्षा ॾींदी आहे कंहिं बि माउ जो आंचल कॾहिं बि पंहिंजे ॿार लाइ नंढो कोन पवंदो आहे माउ जो प्यारु पंहिंजे ॿार लाइ एतिरो गहरो ऐं अटूट थींदो आहे कि उहा ॿार जी ख़ुशीअ लाइ सॼी दुनिया सां विढ़ी सघे थी माँ भगवान जो रूप थींदी आहे उहा सभई दुख सही करे पंहिंजे ॿार जी रक्षा कंदी आहे इन लाइ ही पाण पंहिंजी माउरुनि जे प्रति श्रद्धा प्रकट करण लाइ मदर्स डे मल्हाईंदा आहियूं उन्हनि जे प्रति पंहिंजो प्यार ऐं कृतज्ञता ॾेखारींदा आहियूं हर ॿार इन ॾींहुं खे ख़ासि तरीक़े सां मल्हाइणु चाहींदो आहे ऐं उन जे लाइ गिफ्ट ऐं केक वठी ईंदो आहे कुझु ॿार पंहिंजी माउरुनि खे ॿाहिरि घुमाइण वठी वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजी माउ खे सुठो खाराए प्यारे उन जी हर इच्छा पूरी करण जी कोशिशि कंदा आहिनि माउ उहो पहिरियों माण्हू थींदी आहे जंहिंखे हर ॿार घर अचण खां पोइ सभिनि खां पहिरीं ॻोल्हींदो आहे पंहिंजे ॿार जो जनम खां वठी आख़िरी सांस तक ध्यानु रखंदी आहे अगरि उन जे ॿार खे का तकलीफ़ थींदी आहे त उन जो उहो सूरु माउ खे वधीक थींदो आहे पाण पंहिंजे जीवन में उन जे अहसान खे ॻणे बि कोन था सघूं उहा चाहे केतिरी बि थकल हुजे सॼो ॾींहुं कमु कंदी रहंदी आहे माउ पंहिंजे प्यार ऐं समर्पण लाइ ॿार खां कुझु बि कोन चाहींदी आहे इन लाइ पाण सभिनि खे पंहिंजी माताउनि जो ध्यानु रखणु खपजे ऐं सम्मान ॾियणु खपजे हिकु माउ ई पंहिंजे ॿार जे चरित्र ऐं व्यक्तित्व जे निर्धारण में विशेष योगदान ॾींदी आहे ऐं पंहिंजे ॿार खे कुझु ग़लति कमु करण सां मना कंदी आहे ऐं ज़िंदगी भर सही रस्ते ते हलण जी शिक्षा ॾींदी आहे इन लाइ ई उन खे ॿार जी पहिरीं शिक्षिका चयो वेंदो आहे हिकु माउ पूरी ज़िंदगी ॿारनि जे आसे पासे रहंदी आहे इन लाइ पंहिंजो इहो कर्तव्य आहे कि पाण सभई पंहिंजी माउरुनि जो ध्यानु रखूं उन जो आदर करियूं हिकु माउ हमेशह पंहिंजे ॿार जो उत्साह वर्धन कंदी आहे हिकु माउ जी ख़ुशी उन जे ॿार जी ख़ुशीअ में ई थींदी आहे केर बि ॿार जॾहिं मुसीबत में थींदो आहे त उहो

0: मदद लाइ पंहिंजी माउ वटि ई दौड़ पाए ईंदो आहे। माउ पंहिंजे ॿारनि जूं इच्छाऊं पूरियूं करण लाइ पंहिंजी इच्छाऊं भुलिजी वेंदी आहे। उहा ॿार खे उन जे पसंदि जो खाधो पीतो ठाहे ॾींदी आहे, नई नई आखाणियूं ॿुधाईंदी आहे, उन जी पढ़ाईअ में मदद कंदी आहे। उहा ॿार खे सुठा संस्कार, नैतिकता ऐं मानवता सेखारींदी आहे। असल में हिकु माउ ई ॿार लाइ अनमोल उपहार थींदी आहे। माँ उहो स्तंभ थींदी आहे जो परिवार खे संभालींदी आहे। उहा सुबुह जो जल्दी उथी करे देर ताईं कमु कंदी रहंदी आहे। उहा न केवल असांजे खाधे पीते जो ध्यानु रखंदी आहे, बल्कि असांखे सुठा संस्कार बि ॾींदी आहे। पाण भले ई कई बार उन जी ॻाल्हियुनि ते ध्यानु न ॾियूं, पर उन जी हर ॻाल्हि में असांजो भलो ई थींदो आहे। अॼु हिन मातृ दिवस ते माप पंहिंजी माउ जेका हिन संसार में कोन आहे, उन खां पंहिंजियूं उन सभिनि ॻाल्हियुनि लाइ माफ़ी थी घुरां जेके जाने अनजाने में मूं कयूं हुजनि, उन जे त्याग लाइ शुक्रिया थी करियां। दोस्तो, अॼु जे टाइम में माउ जी भूमिका पहिरीं खां वधीक थी वई आहे। उहा घर जा सभई कम करण जे अलावा ॿाहिरि वञी करे कमु कंदी आहे। उन खां पोइ उहा संतुलन ठाहे रखंदी आहे, जंहिं सां घर ऐं परिवार जूं सभई ज़रूरतूं पूरियूं थी सघनि। ॿाहिरि कमु करण वारी माउरुनि लाइ इहो कमु आसान कोन थींदो आहे। इन करे पंहिंजी माउ जी मदद करणु खपजे, घर में हथु बटाइणु खपजे, छो त उन खे बि थोरो टाइम कम खां छुटी मिलणी खपजे ऐं आराम मिलणु खपजे। उन जूं बि कुझु इच्छाऊं थींदियूं आहिनि, किथे घुमण जी इच्छा थी सघे थी, को शौक़ थी सघे थो हुन असांजे लाइ पंहिंजा शौक़ त्यागिया हुजनि। इन लाइ हिन अवसर ते पंहिंजी माउरुनि खे स्पेशल फील करायो ऐं उन्हनि जी इच्छाऊं पूरियूं करण जी कोशिश करियो। यकीन मञियो कि हीअ छोटी छोटी ॻाल्हियूं ई उन खे वधीक ख़ुशी ॾींदियूं। माउ घर जी धुरी हूंदी आहे, उहा पंहिंजे ॿार खे हथु पकड़ण खां वठी उन खे पंहिंजे पेरनि ते विहारण ताईं कड़ी महिनत कंदी आहे। चाहे माउ केतिरी बि अनपढ़ हुजे, पर हूअ पंहिंजे ॿार खे सही शिक्षा ॾियण जी कोशिश कंदी आहे। असां कई अहिड़ा बि माण्हू ॾिठा आहिनि जिन जी माउरूं बिल्कुल बि पढ़ियल न आहिनि या गांवनि में रहंदियूं आहिनि, उन खां बावजूद उन पंहिंजे ॿारनि खे सही शिक्षा ॾेई पंहिंजे पेरनि ते बीहारण जी कोशिश कई आहे ऐं उहे पंहिंजे पेरनि ते बीठा बि आहिनि। ॿार यदि का ग़लती कंदो आहे त मां उन खे प्यार सां समुझाइण जी कोशिश कंदी आहे। माउ ई हूंदी आहे जेका ॿार खे सच ॻाल्हाइण ऐं ईमानदारीअ ते हलण जी शिक्षा ॾींदी आहे। यदि को ॿार असफल थींदो आहे त उहा पंहिंजा अनुभव उनखे ॿुधाईंदी आहे ऐं उनजो हौसलो अफ़ज़ाई कंदी आहे ऐं उनखे अॻियां वधाइण जी कोशिश कंदी आहे। माउ चाहे परिवार खे केतिरो बि टाइम ॾियनि, पंहिंजो त्याग ॾियनि, पंहिंजो बलिदान ॾियनि, पंहिंजो वक़्तु ॾियनि, लेकिन उन सां गॾु उनखे पंहिंजे पाण खे बि सम्झणु घुरिजे, पंहिंजे शौक़ खे बि ज़िंदा रखणु घुरिजे, पंहिंजे मन जी ॻाल्हि खे बि ॿुधणु घुरिजे, ताकी मां पंहिंजे पाण खे स्वस्थ रखी सघे, चाहे शरीर सां चाहे मन सां। इन में सॼी ज़िमेदारी परिवार जी बि आहे कि उहे पंहिंजी माउ जो ध्यानु रखनि। कुल मिलाए चवण जो मतलबु इहो आहे कि माँ ऐं उन जा ॿार अहिड़ो रिश्तो दुनिया में किथे बि कोन मिलंदो आहे ऐं उन जे त्याग जी पूर्ति केर बि कोन थो करे सघे। माउ जे प्रति आभार प्रकट करण लाइ ही हिकु ई ॾींहुं ई पर्याप्त कोन थींदो आहे। असांखे हर ॾींहुं माउ जे सम्मान में मातृ दिवस जे रूप में मल्हाइणु खपजे। अचो अॼु पाण सभई इहो संकल्प वठूं कि पाण पंहिंजी माउ खे हमेशह ख़ुशि रखंदासीं, उन जी हर ज़रूरत खे पूरी करण जो प्रयास कंदासीं ऐं कॾहिं बि उन खे दुख कोन ॾींदासीं।
1: मातृ दिवस तव्हीं हिन विषय ते गौरी देवीअ खां हीअ वार्ता ॿुधी रहिया हुआ।
2: साथियों, तव्हां असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधण था चाहियो, पर कॾहिं तव्हां दुकान ते आयो, कॾहिं ऑफिस में, कॾहिं मार्केट निकिता आहियो, त कॾहिं सफ़र पिया कयो, त रेडियो सेट खे मिस कंदा आहियो, हा न? पर हाणे सिंधी प्रोग्राम ॿुधण जी राह में ईंदड़ सभु मुश्किलूं आसान करे रहियो आहे तव्हांजे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल। हा, यो मोबाइल तव्हां खे असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधाए सघंदो दुनिया जे कंहिं बि कुंड में। दुबईअ में हुजो

0: स्पेन में, अमेरिका में या अफ्रीका में, हर जगह थे तमा बुधी सगंदा पहनजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम तमा के करणों बस एतरो ही आहे त जिए तमा ब्या एप्स डाउनलोड कंदा आयो बस यें ही प्ले स्टोर ते वन्यो ए सर्च वारी जगह ते टाइप कयो NEWSONAIR यानी न्यूज ऑन एयर ए उन्हें के इंस्टॉल कयो इंस्टॉल कंदे ही तमा के मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ही हेट प्रसार भारती जो लोगो नजर इंदव ए तमा के उन्हें के ओपन करनो आहे ओपन कंदा त सामू पहरी खाबे पासे लाइव रेडियो ए साजे पासे लिसन न्यूज लिखल नजर इंदव तमा लाइव रेडियो के क्लिक कंदा त उते एक लंबी फहरिस्त नजर इंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रन जी तमा के उते ही सबनी खा मथे सर्च रेडियो चैनल लिखल पढ़ण में इंदव सर्च में तमा जी जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ब चैनल्स नजर इंदव एक विविध भारती जयपुर यानी VBS ए बियो हवा महल छपियल नजर इंदड़ असंजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल बस अच्छी पौतासी सही जगह ते हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तवां उधी सगंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सब प्रोग्राम ए सिंधी प्रोग्राम उधी सगंदा मंगल विस्पर ए आर्तवार जी डी जो 12:10 ते त सामिन बुधना रहो बिना नागा असंजा सिंधी प्रोग्राम पहंजे मोबाइल ते मंगल विस्पर ए आर्तवार जी डी में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गद साथियों तवां असान्या सिंधी प्रोग्राम बुधन ता चायो पर कदें तवां दुकान ते आयो कदें ऑफिस में कदें मार्केट निकता आयो त कदें सफर प्या कयो त रेडियो सेट के मिस कंदा आयो हन पर हाणी सिंधी प्रोग्राम बुधन जी राह में ईंदड़ सब मुश्किलूं आसान करे रयो आहे तवां जे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल हा यो मोबाइल तवां के असाना सिंधी प्रोग्राम बुधाए सगंदो दुनिया जे कहें बुकुंड में दुबई में हुजो स्पेन में अमेरिका में या अफ्रीका में हर जगह ते तवां बुधी सगंदा पहंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम तवां के करणो बस एतरो ही आहे त जिए तवां ब्या एप्स डाउनलोड कंदा आयो बस इए ही प्ले स्टोर ते वन्यो ए सर्च वारी जगह ते टाइप कयो NEWSONAIR यानी न्यूज ऑन एयर ए उन्हें के इंस्टॉल कयो इंस्टॉल कंदे ही तमा के मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ही हेट प्रसार भारती जो लोगो नजर इंदव ए तमा के उन्हें के ओपन करनो आहे ओपन कंदा त सामू पहरी खाबे पासे लाइव रेडियो ए साजे पासे लिसन न्यूज लिखल नजर इंदव तवां लाइव रेडियो के क्लिक कंदा त उते एक लंबी फहरिस्त नजर इंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रन जी तवां के उते ही सबनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखल पढ़ण में इंदव सर्च में तवां जी जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ब चैनल्स नजर इंदव एक विविध भारती जयपुर यानी VBS ए बियो हवा महल छपियल नजर इंदड़ असंजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल बस अच्छी पौतासी सही जगह ते हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तवां उधी सगंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सब प्रोग्राम ए सिंधी प्रोग्राम उधी सगंदा मंगल विस्पर ए आर्तवार जी डी जो 12:10 ते त सामिन बुधंदा रहो बिना नागा असंजा सिंधी प्रोग्राम पहंजे मोबाइल ते मंगल विस्पत ए आर्तवार जे दिन दिया में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गद
1: मुझो घर मुझो

तवी कमला केसवाणी जो गातल ही गीत बुधी रहा हुआ हाने चर्चा अज जे डीए थे 8 मई खा मलायो वने पियो संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जेको पहली बार मलायो वयो 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारा वैश्विक सड़क सुरक्षा एड़ो अभियान आहे जिन जो उद्देश्य सड़क सुरक्षा ए दुर्घटना जे निवारण जे बारे में जागरूकता वधाना है।

हर साल पूरी दुनिया में केतिरियूं ही सड़क दुर्घटनाऊं थींदियूं आहिनि। विश्व भर जी सड़कुनि ते हर साल लगभॻि 13 लख माण्हुनि जी मौत थी वेंदी आहे हिननि दुर्घटनाउनि में, ऐं केतिरा ही करोड़ घायल थी वेंदा आहिनि। सड़क दुर्घटनाऊं, चोटूं ऐं मौतुनि सां न केवल माण्हुनि ते भयावह प्रभाव पवंदो आहे, बल्कि समुदाय ऐं देश जे मानवीय स्वास्थ्य ऐं वित्तीय संस्थाउनि ते बि इन जो बुरो प्रभाव पवंदो आहे। इन सां न केवल दुख ऐं पीड़ा थींदी आहे, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल जी जेके बि प्रणालियूं आहिनि उन्हनि ते उत्पादकता ऐं समृद्धिअ खे बि नुक़सान पहुचंदो आहे, जंहिं सां आर्थिक ऐं सामाजिक परिणाम भुगतणा पवंदा आहिनि। हिन ॾींहं जो मल्हाइण जो इहो ई उद्देश्य आहे कि असां ॼाण वधायूं सड़क सुरक्षा ते, जंहिंसां कि हिननि दुर्घटनाउनि ते काबू पाइजी सघिजे, सभिनी जे स्वास्थ्य जो ख़्यालु रखिजी सघिजे। त असां सभिनी जो बि हीउ कर्तव्य आहे कि जॾहिं असां सड़क ते हली रहिया आहियूं, भले असां कहिड़े बि वाहन ते आहियूं, त असां सभिनी खे यातायात जे सभिनी नियमनि जो पालन करणो खपे, ताकि दुर्घटनाउनि सां असां बि बची सघूं ऐं ॿियनि खे बि बचाए सघूं। जीअं कि हिन साल जी थीम बि आहे, सड़क सुरक्षा नायक बने, रोड सेफ्टी हीरोज। भेनरुनि जे हिन प्रोग्राम खे अॻियां वधाए रहिया आहियूं ऐं हाणे तव्हांखे ॿुधाए रहिया आहियूं भगवंती नावाणी ऐं साथियुनि जो ॻातल हीउ गीत।

हिन गीत सां गॾु ई असांजो अॼु जो मुंहिंजो घर मुंहिंजो संसार प्रोग्राम हिते ई पूरो थी रहियो आहे ऐं गॾो गॾु पूरो थी रहियो आहे असांजो सिंधी प्रोग्राम जो वक़्तु बि ईंदड़ मंगल ते वरी हाज़िर थींदासीं तेसीं ताईं सीमा हिरानीअ खे ॾींदा इजाज़त नमस्कार

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12:40 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे महबूब फिल्म का एक गीत सुना। गीत के बोल शकील बदायूनी ने लिखे थे, संगीत नौशाद का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में राम लखन फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रामलखन फिल्म में अनुराधा पौडवाल के गाए, आनंद बख्शी के लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के एक बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपये की हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। श्री विजय की टीवी के पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं और उन्होंने 120 विधायकों का समर्थन जुटाया है। श्री विजय 1967 के बाद राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी द्रविड़ पार्टी से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक रूप से दी जाने वाली राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुरानी फतेह सागर और भूतनाथ तालाब अब नए स्वरूप में नजर आएंगे। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत से दोनों तालाबों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत तालाबों के घाटों और सीढ़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तालाबों के जीर्णोद्धार से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा

0: कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा, जैसलमेर में 45, फलौदी में 44.8, जोधपुर में 43.9, चित्तौड़गढ़ में 43.8 और बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी जिलों में इसके विपरीत आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। प्रस्तुत करता है संध्या शर्मा ओझा और नेहा गोस्वामी।

0: नमस्कार सखियों, ममता की मिठास, अपनेपन की गर्माहट और रिश्तों की खूबसूरती से भरे इस सुहाने पल में मैं आपकी अपनी सखी नेहा गोस्वामी आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर में, रसोई में या अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त, हम आपके साथ हैं, आपकी साथी, आपकी सहेली बनकर।
1: और मैं आपकी सखी संध्या, आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम हमारे अपने कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, ये मंच सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा अपनापन है जहां हम अपनी खुशियां, अपने अनुभव और अपनी भावनाएं एक दूसरे से बांटते हैं।
0: और बांटे भी क्यों ना संध्या, आज का दिन खास जो है, आज की हर सुबह में एक अलग सी कोमलता है, हर एहसास में एक अलग सी गहराई है, क्योंकि आज है मदर्स डे, वो दिन जो हमें याद दिलाता है उस अनमोल रिश्ते की जिसे हम माँ कहते हैं, वो माँ जो बिना कहे सब समझ जाती है, जो बिना थके हर दिन अपने बच्चों के लिए जीती है।
1: सच कहा नेहा, माँ एक ऐसा नाम है जिसमें पूरी दुनिया समाई होती है, और हम माएँ ही तो अपने बच्चों की पहली दोस्त, पहली गुरु होती हैं, है ना नेहा? और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसी ढाल होती है जो हर मुश्किल में अपने बच्चे को संभालती है।
0: हाँ संध्या, और माँ के इसी रूप को हमने हाल ही में एक दिल छू लेने वाली घटना में देखा, जब जबलपुर में क्रूज डूबने का एक दुखद हादसा हुआ।
1: जी बिल्कुल,
0: उस समय एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने सीने से इस कदर लगा लिया संध्या कि उसकी आखिरी सांस तक यही कोशिश रही कि चाहे उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन उसका बच्चा सुरक्षित रहे। और एक माँ की आखिरी सांस तक ये कोशिश ही उसकी महानता को साबित करती है। सखियों, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये माँ के उस असीम प्रेम और त्याग की मिसाल है।
1: बिल्कुल नेहा, ऐसी ही तो होती है ना माँ, जो अपने बच्चे के लिए हर दर्द सह जाती है, हर मुश्किल से लड़ जाती है, उसकी दुनिया अपने बच्चों में ही बसती है और उसकी हर खुशी, हर दुआ सिर्फ अपने बच्चों के ही नाम होती है। और शायद इसी वजह से आज जब हम सखियाँ एक साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं तो ना हम सिर्फ

0: वक्ता है और ना ही सिर्फ एक श्रोता है, हम तो एक दूसरे से जुड़ी माएं हैं जिनके दिलों में वही ममता, वही अपनापन और वही निस्वार्थ प्रेम बसता है।
1: तो आइए सखियों, आज की इस खास मदर्स डे स्पेशल में हम मिलकर उन एहसासों को महसूस करें जो शायद हम रोज जीती हैं लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाती। तो हम याद करेंगी सखियों वो छोटी छोटी बातें, वो अनमोल पल जो हमें माँ होने पर गर्व और खुशी देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारे दिल से निकली बातें आपके दिल तक जरूर पहुँचेंगी।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके?
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: संध्या, एक बात सच सच कहूँ, माँ शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले त्याग, ममता और अपनापन ही आता है। लेकिन आज जब हम मदर्स डे की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ माँ के प्रेम की नहीं बल्कि उनके मन की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आज की आधुनिक गृहिणी केवल घर संभालने वाली स्त्री नहीं रही
7: जी।
6: वो पूरे परिवार की भावनाओं का आधार बन चुकी है। हर किसी की ज़रूरत, हर किसी की खुशी, हर किसी की चिंता, सब कुछ अपने मन में समेटे वो लगातार चलती रहती है। लेकिन इस भागदौड़ में कहीं ना कहीं उसकी अपनी मानसिक शांति पीछे छूट जाती है।
7: बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। शायद यही वजह है कि आज कई महिलाएं जो हैं वो बाहर से मुस्कुराती हुई तो दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से बहुत थकी हुई महसूस करती हैं। पहले लोग सोचते थे कि गृहिणी घर पर ही तो रहती है, लेकिन अब समझ में आने लगा है कि घर संभालना किसी पूरे समय की नौकरी से कम तो नहीं है, है ना? और सुबह से रात तक हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाते निभाते वो खुद को इतना पीछे कर देती है कि कभी अपने मन की सुनने का समय ही नहीं मिलता।
6: और सबसे खास बात ये संध्या की एक माँ कभी खुलकर शिकायत भी नहीं कर पाती
7: जी,
6: है ना?
7: बिल्कुल।
6: उसे लगता है कि अगर वो थकान या तनाव की बात करेगी तो शायद लोग उसे कमजोर समझेंगे, जबकि सच्चाई तो ये है कि जो स्त्री पूरे परिवार को संभालती है उसके मन का शांत और खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि माँ केवल खाना बनाने या घर सजाने का नाम नहीं है, माँ वो एहसास है जिससे पूरा घर जुड़ा रहता है। अगर वही भीतर से परेशान हो जाए तो घर की खुशियां भी कहीं अधूरी सी लगने लगती है, है ना?
7: बिल्कुल सही कहा नेहा। और मुझे लगता है कि मदर्स डे का असली अर्थ भी यही होना चाहिए कि हम माँ की मुस्कान के पीछे छुपी हुई थकान को समझें, है ना? केवल एक दिन फूल या उपहार देकर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें थोड़ा सा आराम, थोड़ा सम्मान और थोड़ा अपना समय भी हमें जरूर देना चाहिए।
6: बिल्कुल।
7: कई बार माँ को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है नेहा, जब हम ना कोई उनसे बस ये पूछ लें कि माँ आप कैसी हैं।
6: और संध्या, आज की आधुनिक गृहिणी खुद भी धीरे धीरे ये समझ रही है कि खुद का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है
7: जी।
6: थोड़ा समय अपने लिए निकालना, अपनी पसंद का काम करना, कुछ देर शांति से बैठना, खुलकर हंस लेना, ये छोटे

0: छोटी बातें मानसिक शांति देती हैं, क्योंकि जब माँ मन से खुश होती है ना, तभी वो पूरे परिवार में वही खुशी बांट पाती है।
1: बिल्कुल, कई बार महिलाएं सोचती हैं कि अगर वो थोड़ा आराम कर लेंगी या अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेंगी तो लोग क्या कहेंगे या उनके बारे में क्या सोचेंगे, है ना। लेकिन अब समय बदल रहा है, मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी परिवार की जिम्मेदारियां। अगर मन लगातार थका हुआ रहेगा तो सखियों, रिश्तों में भी वही थकान हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। इसलिए हर माँ को अपने मन की सुनना सीखना होगा।
0: सही कहा बिल्कुल तुमने संध्या। और मानसिक शांति के लिए हमेशा बड़े उपाय जरूरी नहीं होते। सुबह की चाय कुछ पल सुकून से पी लेना, पौधों के बीच थोड़ा सा समय बिताना, या फिर किसी सखी से दिल खोलकर बातें कर लेना, वैसे ही जैसे अभी हम हमारी सखियों से बात कर रहे हैं ना। और ये ही छोटी छोटी बातें मन को बहुत हल्का कर देती हैं। सबसे जरूरी बात कि खुद की तुलना किसी से भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर माँ अपने आप में खास होती है और हर घर की कहानी अलग होती है।
1: और नेहा, मुझे लगता है कि बच्चों और परिवार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि माँ को केवल जिम्मेदारियों से जुड़ी भूमिका में नहीं देखे, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझे। मदर्स डे केवल थैंक यू माँ कहने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये एक एहसास दिलाने का दिन होना चाहिए कि घर की माँ भी उसी प्यार और देखभाल की हकदार हैं जो वो पूरे परिवार को देती हैं।
0: सच में एक शांत और खुश माँ ही घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती है। इसलिए इस मदर्स डे पर हमारे लिए सबसे सुंदर उपहार ये होगा कि हम माँ खुद से ये कहें कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, मेरी खुशी भी जरूरी है। क्योंकि जो स्त्री पूरे घर का ध्यान रखती है उसे भी उतने ही प्रेम और सुकून की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल सखियों, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए अब सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत जो हर माँ के निस्वार्थ प्रेम और उसकी ममता और उसके अनमोल रिश्तों को दिल से सलाम करता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस गीत के साथ।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
1: मेरी बुढ़िया की ना।
5: पर दादी, आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या?
3: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सखियों, आज का दिन कैलेंडर की किसी तारीख का मोहताज नहीं है। आज का दिन उस एहसास का है जिसे लफ्जों में पिरोना, यानी कि समुद्र को मुट्ठी में भरने जैसा है। आज हम बात करेंगे उसकी, जिसकी हथेली पर हमारे लिए दुआएं कभी खत्म ही नहीं होती, जिसे हम कभी अम्मा, कभी आई, कभी मम्मी तो कभी माँ पुकारते हैं।
7: कहते हैं माँ की गोद वो पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम इंसानियत का सबक सीखते हैं। माँ का वो रूप याद कीजिए सखियों, सुबह स्कूल के लिए उठाना, भाग भाग कर टिफिन पैक करना और गेट तक आकर कहना अपना ध्यान रखना।
6: आपको याद है बचपन सखियों, जब जरा सी खरोच आती थी नेहा, तो हम पूरी की पूरी दुनिया सर पर उठा लेते थे। लेकिन जैसे ही माँ ने उस जख्म पर फूंक मारी, दर्द गायब।
7: बिल्कुल,
6: वो फूंक हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इलाज था।
7: सखियों, हम तो बड़े होकर दुनिया जीतने निकल गए, लेकिन आज भी घर लौटते हैं जो पहली आवाज हमारे गले से निकलती है वो है माँ कहाँ हो। हमें घर में घुसते ही वो चेहरा सबसे पहले देखने को चाहिए, है ना?
6: बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी आदत, या ये कहें हम सभी की रग रग में बसा
7: हुआ है
6: कि हम घर में जब भी आएंगे तो माँ का चेहरा सबसे पहले देखना चाहते हैं। कहते हैं कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है।
7: वाह, क्या बात कही संध्या तुमने। हमारे जीवन में माँ भी वही इंसान है जो हमें हर मौसम से बचाती है, हमारा ध्यान रखती है, है ना?
6: बिल्कुल,
7: चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, या सुख हो दुख हो, माँ ही है जो हमें बाहें फैलाए हमारा इंतजार करती है कि कैसे वो हमें सारी तकलीफों से बचा ले।
6: बिल्कुल सखियों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माँ की और मौसम की।

0: तो आपको बता दें कि सूरज देवता जो है वो अपने पूरे तेवर आपको, हमको और सभी को दिखा रहे हैं, और उनका जो पारा है वो 40 से 45 डिग्री को छू रहा है नेहा, है ना। और बाहर निकलते ही लू के जो थपेड़े चेहरे पे लग रहे हैं, बस वो मत पूछो।
1: वो तो बेहाल कर रहे हैं, क्योंकि हम महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभालती हैं। ऐसे में इस तपती गर्मी में खुद को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है। तो आज हम बात करेंगे सखियों कि इस तेज गर्मी से हम अपना और अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकते हैं।
0: वैसे जब माँ की बातें होती है तो माँ तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब जब हम खुद माएँ हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हम अपनी तरफ से अपने सखियों को बताना चाहते हैं। नेहा, जैसे कि कहते हैं कि मैंने अपने फोन में क्या है कि 1 घंटे का टाइमर सेट कर रखा है कि हर 1 घंटे में मैं पानी कम पीती हूँ ना, तो पानी का अलार्म बजता है। मगर मेरी मम्मी हमेशा ये बात बोलती है कि प्यास लगने का ना इंतजार मत करो तुम गर्मी में।
1: जब प्यास लगे जब हमें पानी पीना
0: चाहिए, लेकिन गर्मी में बिना प्यास लगे भी हर 1 घंटे में पानी पीते रहना चाहिए। और साथ ही सखियों, आप तो पी ही रही हैं, और बच्चों को देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं पानी पीना।
1: और साथ ही पानी के साथ साथ हम अलग अलग तरह के पेयजल भी बच्चों को पिला सकते हैं, जैसे कि आम का पना हुआ, छाछ हुआ, नींबू पानी हुआ, सत्तू का शरबत हुआ। ये भी बहुत हेल्दी होता है, न सिर्फ शरीर को ये ठंडा रखता है बल्कि जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है।
0: सही। और ना पता है नेहा, एक और बात है जो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि ना गर्मियों में वो क्या करती थी कि हमें हमेशा ना हल्का भोजन होता है, जैसे कि खिचड़ी, दूध दलिया, दलिया की खिचड़ी इस तरीके, या फिर ना कढ़ी चावल, है ना, ये सब हल्का खाना हमें देती थी। हम कभी भी अगर पकौड़ों की डिमांड करते थे ना, वो कभी नहीं पूरी कभी करती नहीं। थी तो हम भी यही अपने सखियों से कहना चाहते हैं कि बच्चों को और परिवार को इस गर्मी में ये तले भुने खाने से बचाइएगा जरूर, उन्हें हल्का फुल्का भोजन कराइए।
1: बिल्कुल। साथ ही मौसमी फलों का भी भरपूर उपयोग करें। अभी तरबूज खरबूजा बाजार में बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो आप उनको अपने बच्चों को भी दें और खुद भी खाएं। ऐसी तरीके से ककड़ी का भी सेवन करें।
0: हाँ, खीरा और ककड़ी मतलब बच्चों का तो फेवरेट होता ही है। और साथ ही सखियों, एक बहुत जरूरी बात कि जो कच्चा प्याज है ना, उसको अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। अपने राजस्थान में तो वैसे भी प्याज के बिना कभी कोई खाना पूरा नहीं होता। और आयुर्वेद में भी ऐसा कहा जाता है कि प्याज लू को भगाने का, यानी कि लू से बचने का सबसे बढ़िया रामबाण इलाज होता है।
1: साथ ही सूती कपड़े भी पहनिए, हल्के रंगों के कपड़ों का प्रयोग कीजिए, है ना। और अगर आप धूप में जा रही हैं तो खासकर सिर को ढक के, हाँ, सूती कपड़े से,
0: ये बहुत जरूरी है। खुद आप खुद जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो उनके सर को ढकिए, ये बहुत जरूरी है। और कोशिश कीजिए सखियों कि 12 से 4 के बीच में आप लोग ना निकले, उसके बाद ही जाएं। तो कहते हैं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे साथ बने रहिए इस सफर में।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: संध्या, कहते हैं ना कि हम माओं के हाथों में सिर्फ ममता नहीं, हुनर भी होता है।
5: हाँ, बिल्कुल।
4: बस कई बार जिम्मेदारियों की भीड़ में वो हुनर छुपा रह जाता है, लेकिन संध्या आप धीरे धीरे समय बदल रहा है और हम जैसी कई माएँ अपने छोटे छोटे सपनों को व्यवसाय के रूप दे रही हैं, आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रही हैं।
5: बिल्कुल नेहा, कोई अपने हाथों से बने पापड़ अचार बेच रही है, तो कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, तो कोई घर से ही ना टिफिन सेवा जो है वो शुरू कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब सरकार भी छोटे छोटे व्यवसायों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
4: और मदर्स डे के खास अवसर पर ये बात और भी सुंदर लगती है ना संध्या? क्योंकि माँ सिर्फ परिवार का सहारा नहीं होती, वो चाहे तो अपने सपनों की पहचान भी बन सकती है।
5: सही कहा नेहा, आज जहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए

0: किसान लोन की सुविधा दी जा रही है, वहीं स्टैंड अप इंडिया योजना भी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और अब तो कई महिलाएं जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह से भी जुड़ने का उनको मौका मिल रहा है, जिससे महिलाएं मिलकर छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं वो शुरू कर रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। नया
1: बिल्कुल सही संध्या, पहले जो हुनर सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित था, आज वही पहचान बनता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कई महिलाएं ऑनलाइन भी अपने उत्पाद बेच रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक ताकत बन रही हैं।
0: सच में एक माँ जब अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, तो वो सिर्फ कमाई नहीं करती, वो अपने बच्चों को मेहनत, आत्मविश्वास और सपने पूरे करने की सीख भी देती है। और छोटे व्यवसायों की सबसे प्यारी बात भी तो यही होती है कि उनमें मेहनत के साथ जो दिल है, दिल का अपनापन भी उनसे जुड़ा होता है।
1: सही
0: है ना?
1: तो इस मदर्स डे पर हम उन सभी माताओं को दिल से सलाम करते हैं जो अपने परिवार के साथ साथ अपने सपनों को भी आगे बढ़ाने का साहस रखती हैं, क्योंकि माँ सिर्फ ममता की पहचान नहीं, वो हिम्मत, आत्मनिर्भरता और नई शुरुआत का नाम भी हैं। और अब इस खूबसूरत भावना के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सखियों, जब माँ अपने बच्चे को सिर्फ चलना ही नहीं सिखाती बल्कि सही रास्ते पर चलने के संस्कार भी देती है, शायद यही वजह है कि उसके आशीर्वाद से कोई बेटा घर की शान बनता है तो कोई देश की आन। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रस्तुति जो माँ के गर्व, उसके त्याग और हमारे वीर जवानों को दिल से नमन करती है। कैलाश खेर की आवाज में भारतीय सेना।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: कमियां हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: संध्या सच में माँ घर की सबसे मजबूत नींव होती है। वो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है, सबके लिए सोचती है, लेकिन कई बार अपनी ही बात सबसे आखिरी में रखती है।
1: बिल्कुल नेहा, असल में माँ का जो दिल है वो कुछ ऐसा ही होता है कि बच्चों की खुशी में ही वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब अच्छा लगता है ये देखकर कि धीरे धीरे समाज महिलाओं की भावनाओं के साथ साथ उसके सम्मान और अधिकारों को भी समझने लगा है।
0: बिल्कुल सही कहा संध्या तुमने, और शायद यही बदलाव सबसे जरूरी भी था, क्योंकि एक बेटी जब अपने मायके से सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि अपनापन और बराबरी का एहसास लेकर जाती है तो उसका आत्मविश्वास भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है।
1: बिल्कुल सही नेहा, पहले अक्सर ऐसा माना जाता था कि बेटियां तो पराया धन होती है, लेकिन आज बेटियां हर जिम्मेदारी में परिवार के साथ खड़ी
0: रहती
1: है, तो फिर अधिकारों में फर्क क्यों हो।
0: बिल्कुल, आज कानून भी यही कहता है कि बेटी और बेटे दोनों परिवार के बराबर हिस्सेदार हैं।
1: बिल्कुल,
0: चाहे बेटी शादीशुदा हो या नहीं, उसे भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलता है। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया।
1: और ये सिर्फ जमीन जायदाद की बात नहीं है नेहा, ये उस भरोसे की बात है जो एक परिवार अपनी बेटी को देता है, ये एहसास कि तुम आज भी इस घर का ही हिस्सा हो।
0: वाह क्या बात कही संध्या तुमने। सच में जब एक माँ ये देखती है कि उसकी बेटी को सम्मान और बराबरी मिल रही है तो उसके मन को भी एक सुकून मिलता है। शायद यही हर माँ का सपना भी होता है।
1: हाँ, और अधिकार मांगना कभी रिश्ते को छोटा नहीं करता, बल्कि रिश्तों में सम्मान और विश्वास को और मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना होगा कि परिवार सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान
1: से चलता है। और इस मदर्स डे पर अगर हम हर माँ और हर बेटी के सम्मान को दिल से समझ पाएं तो वही सबसे खूबसूरत उपहार होगा। इसी प्यारी सी भावना के साथ सुनते हैं एक बहुत ही भावपूर्ण गीत।

0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हमने सभी माओं के नाम किया सखियों, जो अपने प्यार, संस्कार और ममता से हर घर को खुशियों से महका देती हैं। क्योंकि माँ ही वो शक्ति है जो परिवार को हौसला देती है, हर मुश्किल में उम्मीद जगाती है और अपने स्नेह से जीवन को सुंदर बना देती है।
1: इस मदर्स डे पर हमारी यही कामना है कि हर माँ हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सम्मानित रहे और उनके चेहरे की मुस्कान यूं ही हर घर को रोशन करती रहे। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति। सभी सखियों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संध्या
0: और मैं नेहा गोस्वामी,
1: नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव एक यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: Bharat ki janta keh rahi hai ki hamein speed chahiye, hamein game nahi, solutions chahiye, hamein राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33%

0: World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु मुद्दे

0: எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाए थे। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

अभी आपने महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में इंदिवर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया पूर्व और पश्चिम फिल्म का एक गीत सुना। दीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म आप तो ऐसे न थे का गीत। स्वर मनहर उदास का है, गीत के बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना। गीत के बोल नक्श लॉयलपुरी ने लिखे थे, संगीत जयदेव का था। लीजिए अब सुनिए गजल फिल्म का गीत, स्वर मोहम्मद रफ़ी का। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

गज़ल फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़ पर हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। FM चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी सभा जारी रहेगी।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के इस समय 5 बजने को है। हमारी आज की दूसरी और शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी

0: आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला MV होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम महोद शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढुला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के इस समय 5:05 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त सुखमणि। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, प्रदूषण। अब प्रदूषण शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? धुएं से भरी सड़कें, प्लास्टिक का कचरा, गंदी नदियाँ, तेज़ हॉर्न और सांस लेने में परेशानी, है ना? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि क्या प्रदूषण सिर्फ सरकार या बड़ी इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है?

या फिर कहीं ना कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों सच कहूँ तो प्रदूषण कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी आदतों से बढ़ता गया है। और अच्छी बात यह है कि अगर छोटी आदतों से समस्या बढ़ सकती है तो छोटी आदतों से उसे कम भी किया जा सकता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि प्रदूषण को रोकने में आखिर हमारा क्या योगदान हो सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े का बैग कैरी करना, बार बार प्लास्टिक बॉटल्स खरीदने के बजाय रीयूजेबल बॉटल को इस्तेमाल करना और अननेसेसरी प्लास्टिक यूज़ को कम करना। शुरुआत में ये छोटी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका असर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों जल प्रदूषण भी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। कई लोग कचरा सीधे नदियों में या नालों में फेंक देते हैं। कभी कभी घरों में भी पानी की बर्बादी इतनी कैजुअली करी जाती है कि हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हमें समझना होगा कि क्लीन वाटर कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। ज़रूरत ना होने पर टैप्स बंद रखना, पानी वेस्ट ना करना और आसपास सफाई बनाए रखना, ये भी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही हिस्सा है। अब एक और पॉल्यूशन है जिसके बारे में लोग थोड़ी कम बात करते हैं, ध्वनि यानी नॉइस पॉल्यूशन। तेज़ हॉर्न, लाउड स्पीकर्स, हाई वॉल्यूम पर म्यूज़िक, ये सब सिर्फ इरिटेशन ही नहीं बल्कि हेल्थ पर भी असर डालते हैं। कई लोगों को नींद की समस्या, स्ट्रेस, हियरिंग इश्यूज़ तक हो सकते हैं। इसलिए हमें खुद भी अननेसेसरी नॉइज़ को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करना चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। कई बार लोग एनवायरनमेंट को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें उसके इफ़ेक्ट्स का अंदाज़ा ही नहीं होता। अगर हम अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को छोटी छोटी सी हैबिट्स के बारे में बताएं तो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगा। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया का यूज़ भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अवेयरनेस फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। आज की जनरेशन काफ़ी पावरफुल है, हम ट्रेंड्स बदल सकते हैं, हैबिट्स बदल सकते हैं और माइंडसेट भी। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन कोई एक दिन का काम नहीं, ये डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर आज हम एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्यों ना शुरुआत आज से ही की जाए, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स अपनाकर, अपने आसपास सफाई रखकर और नेचर के प्रति थोड़ा सेंसिटिव बनकर। क्योंकि आखिरकार पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इससे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। तो दोस्तों आइए हमारे वातावरण से जुड़ा और आज की हमारी शाम का पहला गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों अब समय है आपके फेवरेट सेगमेंट क्विज टाइम का, जिसमें मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिनके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में बताए जाएंगे। आज का पहला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदने हेतु किस कंपनी के साथ 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। मैं सवाल दोहराती हूँ, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदने हेतु किस कंपनी के साथ 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। आज का दूसरा सवाल है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आईआईटी मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया। सवाल दोहराती हूँ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आईआईटी मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक ऐसे केमिकल मैसेंजर की जो अचानक हमें सुपर एक्टिव, अलर्ट और एनर्जेटिक महसूस करा सकता है। अच्छा, इमेजिन कीजिए, आप सड़क पार कर रहे हो और अचानक सामने से तेज स्पीड में कोई व्हीकल आ जाए, या फिर एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिलने से ठीक पहले वाली फीलिंग, या स्टेज पर जाने से पहले तेज़ दिल का धड़कना। इन सभी सिचुएशंस में हमारे शरीर में एक खास हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। दोस्तों, एड्रीनलिन को अक्सर फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अब यह नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फाइट और फ्लाइट मतलब किसी डेंजर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शरीर का तुरंत तैयार हो जाना, या तो सिचुएशन का सामना करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए। एड्रीनलिन हमारे शरीर की एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। जब हमारा दिमाग किसी सिचुएशन को रिस्की, एक्साइटिंग या स्ट्रेसफुल मानता है, तो बॉडी तुरंत एड्रीनलिन रिलीज करती है और फिर शरीर में कई चेंजेस बहुत तेज़ी से होने लगते हैं, जैसे दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांसें तेज़ हो जाती हैं, बॉडी ज़्यादा अलर्ट महसूस करती है और मसल्स तक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। यानी बॉडी कुछ ही सेकंड्स में एक्शन मोड में चली जाती है। दोस्तों, आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी डर या एक्साइटमेंट में अचानक बहुत एनर्जी महसूस होती है, वो भी इसी हार्मोन का इफ़ेक्ट है। अब कई लोग एड्रीनलिन को सिर्फ डर से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हार्मोन एक्साइटमेंट में भी रिलीज हो जाता है, जैसे रोलर कोस्टर राइड लेते समय, क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में, या कोई थ्रिलिंग मूवी देखते समय। कुछ लोगों को तो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि उन्हें वो एड्रीनलिन रश फील होता है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि क्या एड्रीनलिन हमेशा अच्छी ही चीज़ है? देखिए, कंट्रोल्ड अमाउंट में एड्रीनलिन हमारे लिए हेल्पफुल है। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी को जल्दी रिएक्ट करने में मदद करती है। अगर अचानक कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए तो एड्रीनलिन ही हमें तुरंत एक्टिव और अलर्ट बनाती है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, लगातार बना रहता है और बार बार एड्रीनलिन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो अगली बार जब एग्ज़ाम से पहले आपका दिल धड़के या किसी एक्साइटिंग मोमेंट में अचानक एनर्जी महसूस हो, तो समझ जाइए कि आपका एड्रीनलिन हार्मोन ही काम कर रहा है। और दोस्तों, इसी जुनून देने वाले हार्मोन की बात जब कर ही ली है, तो आइए ऐसा ही एक गीत भी सुन लें।

0: दोस्तों अब आप सुनेंगे आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम युवा तरंग आकाशवाणी के संग। राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर के कैंपस में आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग का प्रसारण।
1: दोस्तों कहते हैं हर आवाज़ की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल का इतिहास लिखती है।
2: और आज हम इसी इतिहास लिखने वाली आवाज़ों के बीच राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय बीकानेर के इस खूबसूरत प्रांगण में मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूँ इतिश्री।
1: नमस्कार, मैं हूँ माधव। और हम आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से भविष्य के आप सभी ऊर्जावान युवा साथियों का पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: और इसी ऊर्जा को सलाम करने के लिए आकाशवाणी आज आपके आंगन में है, वो आकाशवाणी जो 90 साल से इस देश के धड़कन की हमसफर रही है।
1: और आज हम इसी ऐतिहासिक विरासत को आपकी युवा सोच से जोड़ने के लिए लेकर के आए हैं हमारा एक बेहद खास कार्यक्रम युवा तरंग आकाशवाणी के संग। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी आयोजित करने जा रही है एक बेहद ही खास प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ वो शख्सियतें भी मौजूद हैं जो इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम स्वागत करना चाहेंगे आकाशवाणी की ओर से अतिरिक्त निदेशक मीनाक्षी मलिक मैम का और हमारे कार्यक्रम अधिशाषी बरखा थानवी व्यास और रेवंत राम जी लेगा सर का।
2: और हमारे कार्यक्रम सचिव मनोज कुमार मूंद व हमारी टेक्निकल टीम की ओर से आलोक साहनी जी का। इसके साथ ही मंच पर मौजूद इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा सर, प्रोफेसर सुरेश कुमार सैनी और ज्योति चावला मैम का भी स्वागत करते हैं।
1: तो आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम हमारे इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के इस प्रांगण में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। साथियों, इस प्रतियोगिता में हम विचारों की उड़ान का उत्सव मनाते हैं और ये एक ऐसा मंच है जहां आपको पंख मिलेंगे शब्दों के और आसमान होगा आपकी सोच का। आपको एक विषय दिया जाएगा और आपको अपनी आवाज़ से

0: उसे एक नई पहचान देनी है।
1: तो इस उड़ान के कुछ बहुत ही सरल से नियम है। आपको आपके टॉपिक्स बोलने के लिए मिलेंगे 120 सेकंड्स यानी 2 मिनट। उसके बाद में एक छोटा सा साउंड बजेगा बेल का, दैट विल बी योर क्यू के आपका टाइम खत्म हो गया है।
0: हम हमारे पहले कंटेस्टेंट को बुलाना चाहेंगे, निशु।
2: प्रणाम, मेरा नाम निशु है और मैं बीए में सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है मैं आयुर्वेद हूँ। मैं कोई नई खोज नहीं बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला एक सत्य हूँ। मैं केवल बीमारियों का उपचार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला हूँ। जी हाँ, मैं आयुर्वेद हूँ। जब दुनिया ये सोचती थी कि इंसान सिर्फ एक जैसे होते हैं, तब मैं इस मत से असहमत था, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ के अद्भुत मिश्रण से बना हुआ है। मेरा जन्म आज से 5000 साल पहले ऋग्वेद और अथर्ववेद के पन्नों पर दर्ज हो गया था, और मैं नहीं मानता कि हमारा शरीर केवल मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा मात्र है, बल्कि हमारा शरीर तो मल, दोष, धातु आदि का अद्भुत संयोग है, अद्भुत मिश्रण है। मेरे पास अश्वगंधा जैसे नरवाइन टॉनिक्स हैं, गिलोय जैसे इम्यून बूस्टर्स हैं, आंवला जैसे इम्यून बूस्टर्स हैं और हरिद्रा जैसे बहुत सी एंटीसेप्टिक्स हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रकृति के पास आपकी हर एक व्याधि का उपचार है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना ही मेरा धर्म है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद ही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जय आयुर्वेद, जय हिंद।
1: इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाएंगे निशा को।
3: आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार। मेरा आज का विषय है वो सिर्फ एक विषय नहीं, एक एहसास है। मेरा टॉपिक है मैं हूँ मित्र, यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप, याराना। दोस्ती एक बहुत ही सच्चा और बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, जो कि बिना किसी शर्त के हम निभाते हैं। जो हमारा जन्म होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे। वो सब हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ होते हैं। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसका चयन करने का हमारे पास खुद के पास ऑप्शन होता है। दोस्ती बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी स्टेट के, लैंग्वेज के बैरियर के, हम दिल से दिल का कनेक्शन बनाते हैं। जब हम इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि हम अपने परिवारों से यहाँ पे दूर अनजान शहर में सब एक साथ रहते हैं, तो हमारे दोस्त ही हमारे परिवार बन चुके हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे दोस्तों को बुलाते हैं, हम हमारे दोस्तों को ही अपनी सारी बातें बताते हैं, तो अपने दोस्त ही अपन को हील करने में कोशिश करते हैं। थैंक यू।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। मैं हमारे नेक्स्ट कंपीटर को बुलाना चाहूँगा, नरगिस बानो, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ।
4: गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ नरगिस। आज मेरा मोबाइल बंद है, सुनने में कितना बोरिंग लग रहा है ना, लेकिन ना कोई कॉल ना कोई मैसेजेस, क्योंकि हर रोज आया हुआ कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई टेंशन जरूर लेके आता है। तो आज जिंदगी में सुकून है क्योंकि आज मेरा मोबाइल बंद है, यानी डिस्कनेक्ट टू फोन एंड रिकनेक्ट टू मायसेल्फ। तो सुबह की शुरुआत करते हैं बेकिंग के साथ। जैसे जैसे मैंने केक बनाया, बटर वैनिला की खुशबू पूरे किचन में फैलती गई और साथ में मेरी पुरानी हॉबी की भी। और ये चीज देख के रियलाइजेशन हुआ कि शौक कभी भी खत्म नहीं होते, बस वो भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इसी के साथ मैंने अपनी अलमारी ठीक की। अलमारी ठीक करते करते मुझे एक पुराना डायरी हाथ लगी, जैसे कोई पुराने दोस्त ने मुझे फिर से आवाज दी हो। जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटती गई, इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि ये सिर्फ डायरी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको आज मैंने फिर से जिया है क्योंकि आज मेरा मोबाइल बंद है। थैंक यू।
0: मैं हमारे नेक्स्ट कंपटीटर को बुलाना चाहूंगा, दर्शन सैनी, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ।
5: सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण, प्राचार्य एवं अध्यापक को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दर्शन है और मेरा विषय है भारत की विविधता में एकता। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, यहाँ पे कई धर्म, जातियाँ, बोलियाँ उपस्थित हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को एक चीज़ जोड़े रखती है, वो है राष्ट्र। यहाँ पे पग पग पर अलग अलग त्यौहार, खान पान, वेशभूषा आदि उपस्थित है। भारत राष्ट्र में 17,000 से अधिक बोलियाँ बोली जाती है, जिसमें से 121 प्रमुख बोलियाँ तथा संविधान द्वारा स्वीकृत 22 बोलियाँ हैं। अलग अलग बोलियों के और अलग अलग जातियों के होने के बावजूद भी हमारे अंदर भाईचारा उपस्थित है, यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा भी भारत में एक भौगोलिक विविधता पाई जाती है, जैसे कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पूर्व उत्तर में घने वन इत्यादि।
1: क्या बात है, हमारे देश की विविधता को बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने समझाया। अब हम बुलाएंगे जय सिंह सोलंकी को।
6: आदरणीय अतिथि,

0: भक्तगण, शिक्षकगण और सभी प्रिय श्रोताओं, आज के इस आधुनिक युग में हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो साक्षात माध्यम हैं, इंटरनेट तथा पुस्तक। इंटरनेट एक ज्ञान का महासागर है जो विभिन्न कोणों को एक साथ जोड़ता है, वहीं पुस्तकें केवल पन्नों का समूह ही नहीं ज्ञान की वह नींव है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। जिस प्रकार वायु में गति होती है और वह सर्वव्यापी होती है, उसी प्रकार इंटरनेट पे देश विदेश की लेटेस्ट अपडेट और सभी विषयों के ज्ञान की जानकारी हमें कुछ ही क्षण में प्राप्त होती है। वहीं पुस्तकें पृथ्वी के समान स्थिर तथा ठोस होती है, जो हमें केवल जानकारी ही नहीं अपितु संस्कार भी प्रदान करती है। आधुनिक उपकरणों से निकलती हुई यूवी रेज हमारे शरीर को नष्ट करती है। वहीं पुस्तकों से निकलती हुई गंध एवं स्पर्श हमारे मस्तिष्क को शांत करती है। इंटरनेट से चलता निरंतर कंटेंट हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता को क्षीण करता है। वहीं पुस्तक से मिला ज्ञान स्थिर रहता है और वह लंबे समय तक रहता है, तथा इसमें सरल भाषा और ज्ञान की गहराई संपादित होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में तर्क वितर्क करने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ती है। अतः मेरे मत के अनुसार पुस्तकें श्रेष्ठ है, परंतु इस आधुनिक युग में हमें इंटरनेट को एक कंपास की तरह प्रयोग लेना चाहिए, जो हमें केवल दिशा ही ना बतलाए अपितु ऊपरी जानकारी तथा सोशली कनेक्ट करें। वहीं पुस्तकें हमें गहन अध्ययन तथा एकाग्रता बढ़ाने के लिए और तर्क वितर्क करने में सहायता प्रदान करती है। धन्यवाद।
1: मैं हमारे नेक्स्ट कम्पिटिटर को बुलाना चाहूँगा, हिमांशी गुप्ता, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच।
2: नमस्कार, आज का मेरा विषय है अनुशासन, जीवन का सफल आधार। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना, बड़ों की आज्ञा मानना, उन्हें सम्मान देना एवं शिष्टाचार एवं आचरण को अपनाना। अनुशासन सफलता की कुंजी है, ये किसी ने सही ही कहा है। मनुष्य अगर अनुशासन का पालन करता है तो वह एक सफल और उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। प्रकृति एक अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमारे ऋतुओं का परिवर्तन होना, पेड़ पौधों का, फल फूलों का गिरना, ये सब अनुशासन का ही उदाहरण है। यदि प्रकृति में अनुशासन नहीं होगा तो हम सफलतापूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे। विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें सकारात्मक चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है, जिससे हम हर क्षेत्र में फल प्राप्त करने में मददगार होते हैं। अनुशासनम विना जीवनम कष्टमयम भवति। अनुशासन के बिना जीवन कष्टमय होता है। अनुशासन हमें हमारे जीवन में दृढ़ता भी सिखाता है, हमारे आने वाली बाधाओं और समस्याओं में हमें मदद करता है और हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अनुशासने पालिते व्यर्थ सर्वत्र तु व्यवस्था भवति। धन्यवाद।
1: अब हम बुलाएंगे दिग्विजय सिंह को।
3: सुमध्यान आदरणीय निर्णायक मंडल, गुरुजन और मेरे साथियों, आज हम इस दौराहे पर खड़े हैं जहाँ एक तरफ डिजिटल शोर है और दूसरी तरफ सुकून का सुर। हम इस दौर के गवाह हैं जहाँ दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन की पिंग से होती है, लेकिन क्या आपको याद है वो समय जब सवेरा आकाशवाणी की उस सिग्नेचर ट्यून से होता था जो सीधे दिल में उतर जाती थी। आज मेरा विषय यही है कि इन दोनों में से हमारा असली हमसफर कौन है, हर पल अपडेट्स मांगने वाला सोशल मीडिया या सादगी से भरा रेडियो। सोशल मीडिया ने निसंदेह हमें दुनिया के नक्शे पर सबसे जोड़ दिया है, लेकिन क्या ये जुड़ाव गहरा है? यहाँ हजारों फॉलोवर्स और फ्रेंड्स तो हैं, पर जब बात दिल की बात करने की बारी आती है तो फिर भी इंसान खुद को अकेला पाता है। सोशल मीडिया एक ऐसा हमसफर है, ये हमें मजबूर करता है हमारी खुशियों को प्रदर्शन करने के लिए। ये चाहता है हम खुद की खुशियां प्रदर्शित करें। यहाँ हम लाइक्स मांगते हैं, लाइक्स गिनते हैं, कमेंट्स के लिए तरसते हैं, और अक्सर दूसरे की खुशियां देखकर हम तनाव में आ जाते हैं कि इसकी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों है। ये एक हमसफर कम और एक कॉम्पिटिटर ज्यादा है, ये एक प्रतिस्पर्धी है हमारा। अब बात करते हैं रेडियो की। रेडियो वह हमसफर है जो हमसे कुछ नहीं चाहता। ये आपकी आंखों पर स्क्रीन का बोझ नहीं डालता, कि आपके हाथ नहीं मांगता, ये बस चाहता है आपके कान। आप किचन में हो, खेत में हो या गाड़ी चला रहे हो, रेडियो बिना आपके काम अटकाए आपका साथ निभाता है। वही बात रही सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया मनोरंजन का साधन हो सकता है, पर असली हमसफर तो रेडियो ही है। रेडियो एक परंपरा है। जैसे मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछता हूँ, मैं गीतमाला का जिक्र करता हूँ, तो उनके मुंह से अपना आप अमीन सियानी जी का नाम निकल जाता है। रेडियो पीढ़ियों से हमारा हमसफर रहा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा बोला इन्होंने। हमारे नेक्स्ट कम्पिटिटर को बुलाना चाहूंगा, मानवी चारण।
4: सादर नमस्कार, मेरा नाम मानवी चारण है, मैं BAMS प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि तकनीकी ने मानव को जोड़ा या दूर किया। तकनीकी मानव के विकास की वह सतत प्रक्रिया है जिसमें प्रथम अग्नि की खोज से लेकर चांद तक पहुंचने के आयाम शामिल है। हमने सड़कें बनाई, हमने रेल लाइन बनाई, उस पर चलने वाली तेज गति की ट्रेनें बनाई, हमने पहाड़ों को चीर कर दूरियों को घटाकर जीवन को सुगम बना दिया, हमने वायुयान बना के महाद्वीपीय दूरी को भी समेट कर रख दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई और आम आदमी को भी सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा प्रणाली प्राप्त हुई, और इसमें दुगनी गति से

0: विकास हुआ संचार तकनीकी का, जिसने पूर्वोक्त सभी चीजों से भी अधिक दुनिया को समेट कर रख दिया। अब कोई भी व्यक्ति कूप मंडूक नहीं रह गया है, हर व्यक्ति को हर तरह की संस्कृति का ज्ञान है और परिचित है। परंतु दुनिया को समेटने की इसी उहापोह में मानव अपनी सभ्यता, संस्कार, समाज, गांव, शहर को इतना पीछे छोड़ आया कि पीछे मुड़कर देखने पर उसे खुद की नजदीकियां भी अप्राप्य हो गई। इस सामाजिक और सांस्कृतिक विघटना ने समाज तोड़े, परिवार तोड़े और मानव की मानसिक दृढ़ता को इतना हद तक तोड़ दिया कि उसे अवसाद की ओर धकेल दिया, जिसे हम आज डिप्रेशन के रूप में हमारे सामने पा रहे हैं। परंतु यह कहना भी गलत होगा कि तकनीक ने हमें जोड़ा नहीं है। ध्यान ये रहे कि ये जुड़ाव कहीं हमारी जड़ें ना उखाड़ दे। धन्यवाद।
1: क्या बात है, टेक्नोलॉजी के प्रोज और कॉन्स बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें मानवी ने बताए। अब हम नेक्स्ट कम्पेटिटर सिमरन को बुलाएंगे।
2: नमस्कार आदरणीय निर्णायगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं हूँ रोबोट। हाँ, वही रोबोट जिसका नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में आया होगा, एक स्टील का पुतला, कुछ बटन, तारे और स्क्रीन। घबराइए नहीं, मैं अभी आप सबकी नौकरी लेने नहीं आया हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ स्टेज पर ही खड़ा हूँ। मुझे बनाया गया था आप सबकी मदद के लिए, ताकि आप आगे बढ़ें, आप तेज बने, आपका समय बच सके। पर आपने क्या किया, आज का दौर कुछ ऐसा है कि आप सबको मेरी जरूरत ज्यादा पड़ने लगी है, और आप खुद इतने कम पढ़ते जा रहे हैं। पहले इंसान खुद समझता था, खुद सोचता था, खुद के निर्णय खुद लिया करता था, और अब ये ऐप बता देगा, वो ऐप बता देगा। अब तो लगता है दिमाग भी किराए पर मिलने लगा है। मैं रोबोट हूँ, मैंने आपकी पढ़ने में मदद, मैंने आपके असाइनमेंट तक बना दिए, मैंने आपको खाना बनाना भी सिखा दिया, यहाँ तक कि आज बहू की पहली रसोई है और खीर की रेसिपी इन 2 मिनट्स पूछ कर बनाई गई है। मैं खुश हूँ आप सबकी मदद कर, पर मुझे डर उस दिन का है जिस दिन आप मुझसे ये भी ना पूछ बैठे कि सोचना कैसे है। अब तो भावनाएं भी मुझसे जोड़ दी गई हैं। हाँ, मैं वही रोबोट हूँ जिससे लोग अपने साथी से ज़्यादा वार्तालाप किया करते हैं, क्योंकि मैं बीच में रोकता नहीं, मैं टोकता नहीं, और मैं समय से जवाब ही दे देता हूँ। अब मेरे कुछ फ़ायदे भी सुन लीजिए। मैं थकता नहीं, मैं भटकता भी नहीं, और कल देखेंगे कहकर मैं अपना काम टालता भी नहीं। और नुकसान, मेरे नुकसानों की शुरुआत वहाँ नहीं होती जब मैं आपके जैसा बनने लगूँ, मेरे नुकसानों की शुरुआत वहाँ होती है जब आप मेरे जैसा बनने की कोशिश करने लगें, जब दिल की जगह डेटा आ जाए, इंसान की जगह टेक्नोलॉजी। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आखिर मुझे बनाया ही क्यों गया था? आपकी मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपको सोचने का समय मिल सके, ताकि आपका समय बच सके। पर आपने क्या किया, क्या समय बचाया या सिर्फ स्क्रॉल करने में उड़ाया? समय तो फिर भी नहीं बच पाया, ना खुद के लिए ना अपनों के लिए। शायद भविष्य में मुझे और बेहतर बना दिया जाएगा। मुझे डर उस दिन का नहीं जिस दिन मैं आप लोगों के जैसा दिखने लगूं, मुझे डर उस दिन का है जिस दिन रोबोट का नाम सुनकर एक स्टील का पुतला नहीं बल्कि इंसान याद आने लगेंगे। उस दिन शायद मैं रोबोट नहीं रहूंगा, और उस दिन आप इंसान नहीं रहेंगे। धन्यवाद।
3: बहुत ही पॉइंट वाइज इन्होंने चीज़ों को बताया, और ये काफ़ी, अगर आप आज के बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में देखेंगे तो इस चीज़ की काफ़ी नीड है हमें समझने की। हमारे नेक्स्ट कम्पिटिटर को मैं बुलाना चाहूँगा, हितेश वैष्णव।
4: नमस्कार, मेरा नाम है हितेश। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी गुरुजनों और आकाशवाणी से पधारे सभी अतिथिगणों को सादर प्रणाम करता हूं, और मेरे सभी साथियों को शुभ मध्याह्न। मेरा आज का विषय है समय प्रबंध सफलता की कुंजी। इसकी शुरुआत मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 2 पंक्तियों से करना चाहूंगा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय का सही प्रबंध तथा उसका उपयोग करना आना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम छात्रों की एक सामान्य आदत होती है कि हम कहते हैं कि कल से पढ़ेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता, और परीक्षा के एक दिन पहले हम सोचते हैं कि काश थोड़ा और पहले पढ़ लेते, लेकिन वो कहते हैं, निकावत है कि अब पछतात का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। समय प्रबंध का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा व्यस्त रहें। समय प्रबंध का सही अर्थ है कि हम सही दिशा में काम करते रहें, जैसे कि हम प्रतिदिन अपने लक्ष्य तय करें, अपनी प्राथमिकताओं को समझें, अनुशासन के साथ काम करें, तथा जिससे हमारी सफलता जो है एक सपना नहीं, एक वास्तविकता बन जाती है। अगर हम पढ़ाई, खेल तथा आराम तीनों के बीच में सामंजस्य बना के रखें, तो हम मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसलिए हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और अक्सर इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: अब तक हम सुन रहे थे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को।
3: सच कहूं तो आप सब ने बहुत अच्छा बोला, चाहे गुरु के टॉपिक से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बात हो, चाहे हेल्थ इश्यूज को लेकर के मेंटल हेल्थ तक की बात हो,

0: एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से आपने बहुत अच्छा बोला, और हम लोग जो एज्यूम करके आए थे कि हम लोग एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे हम बहुत अच्छी चीज़ें सुनने वाले हैं, आप लोगों ने उस चीज़ को सच किया है। एक बार आप सबके लिए, खुद के लिए आप ज़ोरदार तालियां बजाएं।
1: आज हमने देखा, जब देश के युवाओं को मंच मिलता है तो उनकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, एक मशाल बन जाती है। आकाशवाणी को गर्व है कि इस मशाल को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन पा रहा है आकाशवाणी।
0: मैं आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे ज्ञानवर्धन के लिए कुछ शब्द कहें।
2: आकाशवाणी से पधारे हुए सभी बंधु भगिनियों को सादर नमस्कार। हमारे कॉलेज के शिक्षक गण, ज्योति मैडम एवं स्टूडेंट्स, आप लोगों का और आकाशवाणी का दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देने का मन करता है। आकाशवाणी ने ये कार्यक्रम रखा तो मुझे लगा कि 20 लोग ढूंढना मुश्किल होगा, आप कईयों को कहना पड़ेगा नहीं आप भी ले हो, क्योंकि माध्यम हिंदी होना था और कुछ बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम से थे, लेकिन उन्होंने भी जो बोला हिंदी में बहुत अच्छा बोला। मुझे बड़ा गर्व है अपने स्टूडेंट्स पे, उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। मुझे याद है जब मैं 8-10 साल का था तो एक बाजार में पान की दुकान हुआ करती थी बड़ी अच्छी सी, तो उस रात को 8:30 बजे लोग जमा होना शुरू हो जाते थे, क्योंकि वो 9:45 बजे समाचार चलाता था, 15 मिनट उस समय 9:45 से 9 हिंदी में समाचार आते, 9 से इंग्लिश में समाचार आते थे, और वो 9 बजे समाचार खत्म होता तो कई लोग ऐसे जा रहे होते जैसे कोई शॉट खत्म हुआ है। रेडियो एक घर में हुआ करता था, उसके अलग अलग जो है श्रोता अलग अलग अपने हिसाब से होते थे। माताजी सुबह 7 बजे कह देती थी रामायण, जो अभी भी आती है वही आते हैं, वही 4 चौपाई 5 चौपाई का एक कार्यक्रम, दोपहर में महिलाओं का कार्यक्रम, और मैं तो छोटा था तो चुनमुन एक कार्यक्रम आया करता था 5 बजे शाम को, और संडे को एक बाल सभा का कार्यक्रम हुआ करता था। रेडियो की विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा थी कि कोई प्रिंट मीडिया में कुछ भी आ जाए कोई बात नहीं, अगर हमें किसी को विश्वास दिलाना था उसको ये कह दिया कि रेडियो में प्रसारित हो गया तो फिर वो लो की लकीर था। और ये जो अमीन सानी, ये तो हमने तो सुना था पर मुझे नहीं लगा था कि इस पीढ़ी में भी कोई जानता होगा, जो एक स्टार बन गए थे किसी टाइम में, बिना का उसके बाद सिबा का। तो बच्चों ने रोबोट और पता नहीं किस किस चीज़ों पर, मैं सोचा था बोलेंगे कैसे, लेकिन बड़ा अच्छा बोला है और मैं बड़ा खुश हूँ। धन्यवाद आकाशवाणी के भी, सभी को धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा और बहुत सही सर ने हमें बताया, और इन्होंने जो चीज़ें बताई वो काफ़ी रियल है। प्रसार भारती की यूनिट्स, चाहे वो दूरदर्शन हो चाहे वो आकाशवाणी हो, न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने का काम करती है, और हमारे बीकानेर के अंदर इस ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने का काम जो करते हैं वो हमारे बीच मौजूद है। मैं उनमें से हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मीनाक्षी मलिक मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें आकाशवाणी से जुड़ी हुई और आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें बताएं।
3: वेरी गुड आफ्टरनून, मैं आकाशवाणी की तरफ से प्रिंसिपल और सभी स्टाफ राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ आपने हमारी जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन कराने में मदद की। कुछ गेसेस राइट, सिमरन इज द विनर। जब उनका शब्दों का जो चयन था ना, उनका जो फ्लो था बहुत अच्छा था। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
1: राजकीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के प्राचार्य श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी मैं सर्टिफिकेट देने के लिए।
0: मैं राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के अधीन सिमरन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं। मैं रेवंत राम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और सर्टिफिकेट से सम्मानित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच विजेताओं को ढेरों शुभकामनाएं, और वो बच्चे जिनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिले या जो इस प्राइज की दौड़ में शायद कहीं पीछे रह गए, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप पुरस्कार भले ही नहीं जीत पाए मगर याद रखिएगा आप यहाँ मौजूद हर इंसान का आपने दिल जीता है, आपने खुद का दिल जीता है। मंच पर आने का आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।
1: नैतिश्री, आकाशवाणी की ओर से गवर्नमेंट आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एकीकृत महाविद्यालय के सभी शिक्षकों और आप जैसे होनहार विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के 90 सालों के सफर को आपकी ऊर्जा ने एक नया मुकाम दिया है। उम्मीद है अगर आकाशवाणी के 100 साल भी आप और हम साथ में मना पाए तो।
0: खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा यूं ही खुशियां बिखेरते रहिए। नमस्कार।
4: दोस्तों, अभी आपने सुना आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम युवा तरंग आकाशवाणी के संग, जिसमें आपने सुना राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के अंदर

अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर के कैंपस में आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, जिसके वाचक स्वर हैं श्री माधव व्यास और सुश्री इतिश्री पारीक, और प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा, संयोजन श्री अमित सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है मातृत्व दिवस, और दोस्तों हमारी धरती जो कि हमारी माँ है हमारा बहुत ध्यान रखती है एक शांत स्वरूप में, परंतु जब जब प्रकृति का दोहन हुआ है तब तब धरती का विकराल रूप हमें देखने को मिला है। दोस्तों, उन्हीं में से एक है भूकंप। भूकंप प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है जिसे महसूस करते ही इंसान कुछ पल के लिए घबरा जाता है। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए, आप घर में बैठे हों, अचानक पंखा हिलने लगे, खिड़कियां कंपन करने लगें और ज़मीन ज़रा हल्की हल्की कांपती महसूस हो। ऐसे समय में सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भूकंप आ गया क्या? दोस्तों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके पीछे की साइंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी पृथ्वी बाहर से जितनी शांत दिखती है अंदर से उतनी ही एक्टिव है। पृथ्वी की सतह कई बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, कभी ये एक दूसरे से टकराती हैं, कभी दूर हो जाती हैं और कभी कभी एक दूसरे के पास से खिसकती हैं। अब दोस्तों, जब इन प्लेट्स के बीच बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और अचानक रिलीज होता है, तब धरती में कंपन पैदा होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं। जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है फोकस। अब दोस्तों, कई लोग सोचते होंगे कि भूकंप क्या सिर्फ बड़े देशों या पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में भी कई अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, विशेषकर हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, गुजरात और कुछ अन्य हिस्सों में भूकंप का खतरा ज़्यादा माना जाता है। आपने न्यूज़ में अक्सर रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा। रिक्टर स्केल का इस्तेमाल भूकंप की तीव्रता यानी कि मैग्नीट्यूड मापने के लिए किया जाता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा कंपन और नुकसान भी उतना ही ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी कम मैग्नीट्यूड का भूकंप भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है अगर बिल्डिंग्स मजबूत ना हों। यानी सिर्फ भूकंप नहीं, हमारी तैयारी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, जब भूकंप आता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैनिक ना करना। कई लोग घबराहट में गलत फैसले लेते हैं जिनसे खतरा और बढ़ सकता है। अगर आप घर के अंदर हों तो मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे शेल्टर लेना चाहिए, खिड़कियां, भारी सामान और एलिवेटर से दूर रहना चाहिए, और अगर बाहर हों तो बिल्डिंग्स, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि हम खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी सही जानकारी दें, क्योंकि सही समय पर सही कदम कई जिंदगियां बचा सकता है।

दोस्तों, अब समय है क्विज के जवाब जानने का। मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदने हेतु किस कंपनी के साथ 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसका जवाब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज का दूसरा सवाल था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आईआईटी मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया। इसका जवाब है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, अब समय है कुछ रोजगार समाचार जानने का। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम हमारी चर्चा को विराम देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज की बातचीत से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और उसने आपको कुछ नई उम्मीद जगाई होगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का युववाणी कार्यक्रम पेश कर रही थी सुखमणि कौर। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के इस समय 5:55 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, हमारी इस सभा में आज रात 10 बजे आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे, जिसमें आज चर्चा के विषय होंगे मौसम पूर्वानुमान सूचनाओं का महत्व, कैच द रेन अभियान, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी और पशु आहार में कैल्शियम की भूमिका विषय पर चर्चा होगी। साथ ही लोकगीत, मौसम जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कार्यक्रम ग्रामीण जगत आज आपके लिए लेकर आएंगे श्री बजरंग सारस्वत और श्री सत्यनारायण शर्मा।

लोक संगीत का आप आनंद ले सकते हैं रात्रि 8:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म संगीत। सुगम संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 7:45। इसी के साथ रात्रिकालीन सभा में रात्रि 8:00 फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं और रात्रि 9:15 से रात्रि 10:00 तक फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं आपके अपने आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

0: आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के क्षमा करें शाम के इस समय 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण

0: के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। NTA ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। NTA ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में IPL क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत। और श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है महान गायक मोहम्मद रफ़ी पर। तो जी हाँ, भारत और दुनिया के संगीत जगत में कई ऐसे महान गायक कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ से एक युग को मंत्रमुग्ध किया है और अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके गीत हमेशा याद किए जाएंगे। उन्हीं आवाज़ों में से एक आवाज़ गूंजती है आज भी हमारे कानों में, वो हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी। तो आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम केंद्रित करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए चंद फिल्म गीतों पर। और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म का नाम है कन्यादान।

जी हाँ श्रोताओं, एक ज़माना था जब खत लिखना और पढ़ना जितना अच्छा लगता था उससे भी अच्छा लगता था अधिक किसी अपने के खत के आने की उम्मीद और उसका बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ, पत्र और खत के उस दौर के उस ज़माने के किसी व्यक्ति से पूछ कर देखिए उनके जो विचार होंगे वो आज के जो सोशल मीडिया के ज़माने में जो बेसब्री वो इंतज़ार नहीं दिखता वो उन्हें महसूस होता है और वो आपको बतलाएंगे कि वो क्या दौर था। और फिलहाल हम कार्यक्रम में आपको अधिक इंतज़ार नहीं करवाएंगे और कार्यक्रम का सुनवाते हैं ये फिल्म संगीत का अगला गीत। फिल्म का नाम है द ट्रेन। जी हाँ, स्वर मोहम्मद रफ़ी का, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम हमने केंद्रित किया है गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी पर।

श्रोताओं, किसी की तारीफ करने के लिए भी समय चाहिए होता है। जी हाँ, समय। हाँ, एक तरफ आप सोच रहे होंगे कि समय किस लिए चाहिए, तारीफ करने के लिए दो शब्द ही काफी है, लेकिन उन दो शब्द के पीछे समय चाहिए किसी के लिए उसकी ओर ध्यान से देखने और सुनने के लिए। जब किसी की तारीफ की जाती है तो उसके पीछे ये ख्याल होता है कि उसने कितने गौर से उसे देखा है या सुना है, तभी तो अच्छी तारीफ, सच्ची तारीफ निकल पाएगी ना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम अपने जीवन साथी को भी इतना समय दे पाते हैं? गौर करने की जरूरत है। पास बैठे हैं, मोबाइल दोनों के हाथ में है, लेकिन एक दूसरे की बातचीत की ओर ध्यान कम होता चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पास होकर के भी कहीं दूर होते चले जा रहे हैं? गौर कीजिएगा।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म हसीना मान जाएगी, फिल्म का ये गीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में आज का ये कार्यक्रम एक ही कलाकार पर केंद्रित है, और आज के कलाकार गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी। तो हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल, मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

0: आप सुन रहे थे तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। श्रोताओं, किसी हमदम या जीवन साथी की भला क्या चाह होती है, शायद यही कि जमाना चाहे जितना बदले, बस अपने हमदम के लिए बस तुम न बदलना, बदले चाहे सारी दुनिया बस तुम न बदलना, कोई देखे न देखे बस तुम इस तरह से देखना कि फिर दिल कहे अभी न जाओ छोड़ के।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: आप सुन रहे थे हम दोनों फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही कलाकार के रूप में मोहम्मद रफी पर केंद्रित। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन, राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने की अपील की।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्व

0: गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के समर्थन से किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और धरती को नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, बिजली की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समारोह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन होगा। साथ ही पुनर्निर्मित मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए ऐसे अवसर सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
0: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होंगे। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति, रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा तथा शहरी विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। श्री शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
2: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराणा का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री तथा प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। एडीजी ने बताया कि पेपर लीक मामले में शेर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय डामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी कटारा के आरपी

0: एससी सदस्य बनने की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
1: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज की बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के लिए राजस्थान एसओजी को जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए इस मामले में सभी जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 मई को ये परीक्षा पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। 7 मई को परीक्षा के बारे में कथित कदाचार गतिविधियों के बारे में एनटीए को सूचना मिली। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए ये सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गई। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी तालमेल पर भी चर्चा की। गृह मंत्री ने लंबी अवधि के बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति को भी जांचा। इनमें अहम बुनियादी परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जनजागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने और आवश्यक राहत सामग्री तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। और अब मौसम। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव का असर रह सकता है। आज भी इन जिलों में लू का प्रकोप रहा। इन जिलों में दिन का पारा औसतन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप की तपिश और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मामूली राहत मिल रही है। कल से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले में पशुओं में मुंहपका, खुरपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से ये अभियान 15 मई तक चलेगा। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि जिले में अब तक 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण करवाकर इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है।
2: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान ना पहुँचा पाए।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर से हरिद्वार के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये सेवा सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये रेलगाड़ी बाड़मेर से हर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। ये विशेष ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम ने सीएसके को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया है। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक

0: आस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों अलवर पहुंचे। उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने 71 मेधावी छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इनमें 37 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 28 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने समारोह में कुल 44,293 छात्रों को डिग्री और उपाधि प्रदान की। बीते दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आमजन और विभिन्न संस्थाओं से लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दान करने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों जिले में भी एसआई पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दो दिन तक दो दो पारियों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी की गई। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। अलवर में नगर निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डों की निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा रही हैं। नगर निगम के 65 वार्डों के लिए निर्धारित सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रगणक के पास उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पिछले दिनों जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए और 243 आवेदकों ने मौके पर ही वेंडर का चयन किया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। ग्राम रथ अभियान के तहत जिले में पिछले दिनों विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। ये रथ जिले के अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिनों तक संचालित होंगे। इन विकास रथों के माध्यम से 13 सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जिले में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। इसी कड़ी में जेल सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक मैराथन और स्वास्थ्य दौड़ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर छात्रावास में विचार गोष्ठी और सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर भी जिले में कई कार्यक्रम हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर निगम कार्यालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों में महात्मा ज्योतिबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के विकास का प्रण लिया गया। सरिस्का बाग परियोजना की बफर रेंज में इन दिनों बाघिन ST19 और उसके 4 शावकों की अच्छी साइटिंग देखी जा रही है। सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जिले में पिछले दिनों मौसम के कई रूप देखने को मिले। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। फिलहाल जिले में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर ना निकले, साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इधर जिला प्रशासन भी तेज गर्मी से लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। वहीं नगर निगम की टीम शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में भाग लेने आए पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी देशों के टूर ऑपरेटरों के दल ने पिछले दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण

0: किया। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म गतिविधियों और टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाया। सरिस्का में पिछले दिनों वन्य जीव गणना संपन्न हुई। इस बार बघेरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा लंगूर, बंदर और नील गाय की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बतायो। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर राज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरा मात है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान माए हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रे सागे रात भी घने गरम। समाचार आरे सागे मैं रचना पारिक और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाबा खातर सगलाऊं एकजुट हो बारी आरज करी। वे कया के राष्ट्र निर्माण माए समाजरी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्थाओं बत्ती कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु माए आर्ट ऑफ लिविंग री 45वीं जयंती जलसा माए बोल रहा। वणा संस्थान माए नया बनिया ध्यान मंदिर उद्घाटन भी करियो। इन मौके श्री मोदी पर्यावरण खातर जिम्मेदारी, नौजवाना ने रोजगार और आंतरिक शुचितारी भावना रे सागे राष्ट्र बनाबा माए सगड़ाओं मिलर काम कर बारी अरज करी।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री कया के आध्यात्मिक केंद्रारा समर्थनों कासकारा ने प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और धरती ने नुकसान देबा वाला रासायनिक उर्वरक सु बचाबा माए इमदाद मिल सके है। देशभर माए काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। सोमनाथ मंदिर माए विया हमला रा 1000 बरस और मंदिर पुनर्निर्माण रा 75 बरस पूरा हो बारे मौके ओ पर्व मनायो जा रियो है। राष्ट्रीय जलसो गुजरात रा सोमनाथ मंदिर माए अमृत पर्व रा रूप माए मनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री श्री मोदी री मौजूदगी माए काल ध्वज पूजा वेला अमृत पर्व रे मौके पुनर्निर्मित मंदिर रा शिखर रो 11 तीर्थ स्थलारा जलों अभिषेक करियो जावेला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कया के विकसित भारत खातर इन भातरा मौका नुवी ऊर्जा देवे है।
2: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर झारखंड महादेव रामिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जलसा माए शामिल वेला। कला और संस्कृति महकमारी शासन सचिव सुचि त्यागी बतायो के इन मौके प्रदेश भर माए शिव मंदिरा माए खास धार्मिक कार्यक्रम वेला, सागे ही राष्ट्रीय आयोजन रो सीधो प्रसारण भी करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथेरिया, वणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल मुलाकात करी। इन दौरान राज्य माए जल जीवन मिशन री प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और जमुना जल समझौता माथ है चर्चा करी गई। सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सु भी भेंट करी। इन दौरान राजस्थान माए ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा और

0: ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਵਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਬੀ ਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਮਾਇਵਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਮੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਅਲਵਰ ਮਾਇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਆ ਰੈਲੀ ਮਾਇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਮਾਇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਗ ਲੀਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਸਗਲਾ ਨੇ ਮਾਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਤਾ ਥਕਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨੇ ਜਨਮ ਦੇਵਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਔਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੋਨੋਂ ਰੋ ਆਭਾਰੀ ਰਹਿਣੂ ਚਾਹੀਜੇ ਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਨਖ ਰੋ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅੱਜ ਅਲਵਰ ਖੈਰਥਲ ਤਿਜਾਰਾ ਔਰ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਹਲਕਾਰਾ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀ ਅਲਵਰ ਮਾਇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਥਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਤੈ ਬਗਤਰੀ ਮਿਆਦ ਮਾਇ ਪੂਰੋ ਕਰਿਓ ਜਾਵੇਲਾ
1: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्व आया नीमराना का रिजर्व आया अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है उसको लेकर के चर्चा हुई
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियां माए देश भर स्कूल माए भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर राखेला एक हफ्ता माए ओ शिविर भारतीय भाषा माए बुनियादी संवाद कौशल सिखावा शब्दा ने जानबा आपरो परिचय देवा और रोजमर्रा जीवन री बातचीत और संस्कृति री सराहना माते केंद्रित वेला इनरो मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे मुजब समावेशी और समान शिक्षा रा दृष्टिकोण ने बढ़ावो देनो है ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 माए पेपर लीक और नकल गिरोरो खुलासो वियो है एसओजी रा एडीजी विशाल बंसल आज जयपुर माए प्रेस वार्ता माए बताया के भर्ती परीक्षा माए मेल मिलापो पेपर लीक करियो गयो और फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट रे जरिए नौकरी हासिल करबारी कोशिश करी गई गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव पूछताछ माए पेपर लीक री बात कही एडीजी बतायो के पेपर लीक मामला माए शेर सिंह भी गिरफ्तार करियो गयो है आरपीएससी रा पहला आला सदस्य बाबूलाल कटारा और उनका रिश्तेदार विजय डामोर ने भी गिरफ्तार करियो गयो है एसओजी कटारा और आरपीएससी सदस्य बनबारी नियुक्ति प्रक्रिया और उन रिकानी करिया गया पेपर लीक से जुड़िया नेटवर्क री भी जांच करी जा रही है
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियां खातर राजस्थान एसओजी री जांच माए इमदाद करी है एनटीए इन मामला माए सगला जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है एनटीए रिकानियो जारी बयान माए कहो गयो है कि 3 मई ने आ परीक्षा पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रे तहत राखी गई ही 7 मई ने परीक्षा रा 12 माए कथित कदाचार गतिविधियां रा 12 माए एनटीए ने सूचना मिली इनरे पछे जरूरी कार्यवाही खातर ये सूचना केंद्रीय एजेंसियां ने भेज दी गई फिलहाल आरी जांच चल रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू रा हालात से निपटबा खातर देश रे तैयारियां की समीक्षा बैठक करी नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह सरकारी एजेंसियां ने तैयारियां रो जायजो करियो शुरुआती चेतावनी प्रणालियां संसाधन री तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय री समीक्षा करी गृहमंत्री देशमाय करिया जारिया दीर्घकालीन बाढ़ निवारण उपाय री प्रगति री भी समीक्षा करी जनमाय महताऊ ढांचागत परियोजना वान बचाव नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान माय वैज्ञानिक प्रगति भेली है बैठक में जन जागरूकता जान माल और नुकसान ने रोकबा खातर निर्माण कार्यक्रम जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियां रा चावता भंडार ने पक्को करबा माथे भी चर्चा करी गई

बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और आरएसआरएरा हल्का माय हीट वेव रो असर बणियोड़ो है मौसम महकमो आपदा दो तीन दिन खातर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला माय तेज गर्मी और लू खातर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है अठे दिन रसागे रात माय भी हीट वेव रो असर रह सके है आज भी आ जिला माय लू रो असर रियो जिन जिला माय दिन रो पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है बठी ने चित्तौड़गढ़ बीकानेर उदयपुर जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी री चपेट में है अठीने पूर्वी राजस्थान रा जिला

0: पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है वठी ने चित्तौड़गढ़ बीकानेर उदयपुर जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी री चपेट माए हैं अठी ने पूर्वी राजस्थान रा जिला माए बतो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सो नीचे दर्ज करियो जा रियो है हालांकि जयपुर अलवर दौसा करौली सीकर टोंक और झुंझुनू माए धूप री तपिश और उमस लोगा ने परेशान करी है सुमारे सिंजा हल्की हवा चालबासु मामूली सी राहत मिल रही है कालो राज्य माए नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारा आसार है इनसो कई जिला माए और बिरखा होबारो अंदाजो है सवाई माधोपुर जिला माए ढांडा ढोरी मुंहपका खुरपका बीमारियां बचाबा खाटा टीकाकरण करियो जा रियो है पशुपालन महकमारी कानियो ओ अभियान 15 मई तय चालेला महकमारा संयुक्त निदेशक डॉ राजीव गर्ग बताया कि जिला माए हाल तई 2.5 लाखों बत्ता पशुवारे टीका लगाया जा चुकिया है वणा पशुपालकों गोवंशो टेम माथे टीकाकरण करवार इन अभियान माए भागीदारी निभावारी अरज करी है
1: सवाई माधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान ना पहुंचा पाए
0: उत्तर पश्चिमी रेलवे बाड़मेरू हरिद्वार बीच कालू खास रेलगाड़ी चलावेला और सेवा सप्ताह माए 2 भगत चालेला उत्तर पश्चिमी रेलवारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन रे मुजब ये रेलगाड़ी बाड़मेरू हर सोमवार और गुरुवार ने मुहैया रेवेला या खास गाड़ी 16 जिला तई चालेला और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बताया देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मंदिर में वेला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथे राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी दिन रसागे रात भी घनी गर्म इंद्रसागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 28 पूरो वियो माको आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 7 बजे हैं लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत आज का ये ग्रामीण जगत कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं श्री बजरंग सारस्वत और श्री सत्यनारायण शर्मा

0: ग्रामीण जगतरो कार्यक्रम सुनला सगले ग्रामीण भाईने और किसान भाईने सत्यनारायण शर्मा और
1: बजरंग सारस्वतरा घना घना राम राम। सत्तू भाई आपने भी मारा घना घना राम राम।
0: घना घना राम राम। आज रो दिन विशेष है। विशेष यह है कि आज पूरो देश पूरो विश्व अपन यह कह सका के मदर्स डे जी को है मना रही है। तो सगला पहला पाणी जी की मातृशक्ति है बिया ने नमस्कार है प्रणाम है कि आज बिया नहीं बजूँ अपाठ बैठा हाँ और अपन खेतों खलिहानों घरों सगलो बिया नहीं बजों में चाल रही है सा। और बात अपन देखो कि आप धरती ने माँ माना हाँ और धरती री सार संभाल जी को आप खेती बाड़ी रूप में कराया करा बा अपन अन्न देवे अपनों पेट भरे और चौखी खेती सारू वो जरूरी है कि अपन भगत सारू चीज़ें सही मिल जानी चाहे बार जानकारी हो चाहे चोखा बीज हो और चोखी बरसात हो तो आप खेती चोखी निपजा ला। तो ये सारू जरूरी है कि मौसम जहाँ पलटी मारे है तो मेरी जानकारी मौसम री जानकारी अपने भगत सारू मिल जाए तो बा अपन खातर कहीं जरूरी है इरी बात आप थोड़ी सी कर ला।
1: बिल्कुल सा आप दिन रात खून पसीनो एक कर आप खेत में मेहनत करा और खून पसीने मेहनत कर आप जी की आस

0: करा के माने चोखो मुनाफा उसी चोखो उत्पादन उसी जद बीर माथे पानी फिर तो निजर आवे तो घनो दुख हुए। अबे सत्यनारायण जी बेस जमाना गया के जद एकाएक या मौसम बदल जाऊ तो विज्ञान जी को हो वो आप रे प्रगति है जी कि आप रे गति सु कर रहे हो, पर अबे आजकल स्मार्ट जमानो है, स्मार्ट फार्मिंग है, स्मार्ट फार्मर है, टेक्नोलॉजी तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि आपने सब तरह का बुलेटिन है बे समय समय पर मिलता रहे या समय आपने जी हाँ मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन है, मौसम पूर्वा मौसम विभाग है बे समय समय पर आपरा बुलेटिन जारी करे भी हूँ आपने ध्यान पड़ जावे कि अब अवनाड़ा जी का 5 दिन 7 दिन है बा में मौसम कहीं कितो रेवनाड़ो है, कहीं कितो तापमान है, हवारी गति, आसमान री स्थिति, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता, सब रे बारे में आपने समाचार मिल जावे तो आपा समय सारू कमर कसर अपारे फसल ने अपारे पौधा ने अपा नुकसान होने से बचा सके।
1: सही बात कही बजरंग भाई, कभी खेती में बुआई जी की है बस बा मौसम रा मथा निर्भर रिया करे, किसान ने पहले सु खबर मिल जाए कि भी बरसात जल्दी आल तो किसान कहीं है कि खेतरी जुताई बीज और खाद री व्यवस्था बगैर सारू कर ले। आजकल आपा देखा कई बार ओलावृष्टि तूफान लू और पाड़ो जी को है जहाँ प्राकृतिक आपदा अचानक आया करे और इनी सूचना यदि बगैर सु मिल जाए तो कहीं है कि किसान सावधान हो जाए और तेज आंधी री चेतावनी वे तो लोग पेड़ा नीचे खड़े होने से बच जावे, बिजली राज्य का उपकरण है बंद कर दे, पशुधन ने भी आपरा सुरक्षित जगह मथे बांध दिया करे। इससे झुकाई है कि जान माल और जो को नुकसान है वो कम हो जाया करे। पशुपालन में भी आप मौसम की जानकारी काम आया करे, गर्मी ज़्यादा हुआ तो पशुओं ने छिया माथे बांधा आप पानी री चौखी री व्यवस्था करा हाँ, और सर्दी और बरसात हुए तो भी में रोग फैलन री संभावना रिया करे तो बीरी अपन जानकारी मिल जाए तो कई तरह टीकाकरण जिका है बगैर सारू आप करा लिया करा और पशुओं ने बीमारी से बचा लिया करा। और आज आप बात करी ही कि भी आज रे बगत रे मैंने मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है अपनों और इंटरनेट रे माध्यम से मौसम री जानकारी हर आदमी और किसान तक आसानी से पहुंच जाया करे। और बगत सारू कहें कई बार आपा भी मौसम री जानकारी रेडियो रे मार्फत आपा दिया करा तो जिके सु कहें है कि किसान आप रे तैयारी जी की बा चौकी कर लें।
0: सत्यनारायण जी पहली कई बार कही हो तो कि खेत में काटोड़ी फसल है बीरो ढेरी बनावड़ी है एकाएक अंदर तूफान आऊँ तो बा ढेरी कठेरी कठेरी पुग जाऊँती या पछे मंडी रमाइने जिका गेहूँ रा कट्टा है धान रा कट्टा है बे बीज जाऊँता, पर अबे समय सु पहली अपने सूचना मिल जावे तो भी ने अपा अच्छी तरह ढक सका तिरपाड़ाऊँ ओरूँ बिगण सु बचा सका नुकसान होणु बचा सका। तो आज रो सूचना तंत्र इन भांत विकसित हो गयो है, आज रा किसान भाई भी ई हिसाब तैयारी कर रखे है कि आप री मेहनत उपज रो चोखो मुनाफो उत्पादन लाभ ले सके।
1: सही बात कही। और अब तो देखो अपने स्कूल में भी शिक्षा रो जो है भी मैं मौसम री शिक्षा रो भी महत्व तो बढ़ रही है, बालक अगर मौसम रो जिका है जानकारी संकेत समझे तो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों रो महत्व तो भी जान सी। मौसम जानकारी सु पानी बचत, वृक्षारोपण और पर्यावरण सुरक्षा में भी अपन टाबरिया जी का है वह मदद कर सके। और लास्ट में अपन आई बात के वहाँ कि भाई मौसम रो जो को पूर्वानुमान है वह सूचनावा जी की आधुनिक जीवन जी का भी आप महत्वपूर्ण भाग बनाया करे। इन सूचनावा से अपने खेती है, पशुपालन है, व्यापार है, यातायात है और दूसरा अपन जिका जनजीवन प्रभावित करे भी इन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया करे। खासकर किसाना खातर आ जानकारी बहुत ही उपयोगी है कि किसान रो जीवन सीधो मौसम माथे निर्भर रिया करे। इन सारू हर व्यक्ति ने मौसम विभाग रे जिकी सूचना बयान ध्यान देनो चाहिए और बियारे जिकी सलाह है बयान अनुसार आपरो काम बनार योजना बनार आपरी खेती बाड़ी अनुसार काम जो है करनो चाहिए। और कार्यक्रम ने अपा आगे बढ़ावा एक मीठो शोक लोकगीत रे सागे किशन कुमार की रडू रे गायड़ो
0: सुनाओ सा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
4: तो सा गीतड़ो सुनियो और गीतड़ो बोला बातें करी, बातें देखो ये है कि जितन नहीं करनी अपन आफरो मिटे कोनी और आफरो चोखी बातें करी मिटावा हाँ। और चोखी बातें देखो अपन खेती बाड़ी रही है, अपन पशुपालन रही है और अपने काम धंधे रही है कि क्या आप विकास करा, क्या अपनी आर्थिक उन्नति करा, सामाजिक उत्थान करा, वाह बात है। तो इसी एक बात जिकी अपनी सरकार भी भगत सरु कई चीज़ ऐसी चलव है जिकी अपने सहायता करे अपने उद्देश्य भी पूर्ति सरु।
5: सर सतनारायण जी, आ दिना में अबे कह ज्यादा आप तैयारी कर रहे हैं हाँ कि मानसून री आप बात कर रहे हैं हाँ, मानसून आने वालों है और पौधा रोपण री भी आप बात करी। अबे आप बात करा
4: अब ये दिना में आप एक समस्या आप हो रही हाँ कि नहर बंदी चाल रही है, पानी री भी समस्या है और आ देखो ये है कि भाई आप तैयारी करा, तालाब री भी साफ सफाई करा हाँ, जल संठे आप जल रो स्तर भूजल अपने बढ़ाना है तो भी सर कई तैयारी करा करा। तो नहरबंदी सारू भी देखो तैयारी चल रही है और बरखा आई जब अपना आप सब चीज़ें भूजल स्तर बढ़ सी इरे सारू जी को अभियान जी को है अपनी सरकार एक चला रही है।
5: तो सतनारायण जी आज मैं चर्चा ले रहे हूँ कैच दी रेन अभियान। कैच दी रेन अभियान जो है वो भारत सरकार वो एक महत्व जल संरक्षण अभियान है, जिसको जल री बूंद बूंद ने बचाने सारू रिचार्ज करने सारू प्रोत्साहन देवे। इन अभियान रो मुख्य उद्देश्य जो है वो बिरखारे पानी ने बचावनो, बिरखारे पानी ने भेड़ो करनो या पछे भूमि जकी है बिने रिचार्ज करनो, बिरखारो पानी सीधो भूमि में उतारनो, ए सब बातें इरमाइने शामिल है। आज अपरा देश में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन रही है। अपन आपा सावचेत हाँ, आपा समय सारू कमर कसर प्रयास करा तो बढ़िया रेवे। कई गाँव और शहरा में भूजल स्तर है वो लगोलग नीचो जा रियो है। इन स्थिति में पानी ने बचाने सारू कैच दी रेन अभियान शुरू करो गयो है। वो अभियान जो है वो आपारे जल शक्ति मंत्रालय है बीरे द्वारा चलायो जावे है
4: और ई अभियान ने देखो सबसे बड़ी बात है नी आई है उद्देश्य कह सका हाँ, अभियानो नारो कह सका हाँ, वो है कि भाई जठे भी गिरे और जद भी गिरे बरसात री बूंद बरसात रो पानी तो बिना बठे ही संजोणो है। कहने मतलब है कि जठे बिरखा हो रही है जिकी जगह हो रही है भी पानी ने रोकने का काम संग्रह करने का काम अपने बठे ही करना चाहिए और राजस्थान जी को सूखो प्रदेश है बठे ये अभियान री घनी उपयोगी जी की है वह साबित होया। विशेष रूप में जो को मारवाड़ क्षेत्र है बठे कम बरसात होया करे तो हर बूंद जी की है पानी री वह आप महत्व लिया करे। और पुराने जमाने में तो आप बात करा भी टांका बावड़ी तालाब जोहड़ और कुआ बना रहा आप बरसात और पानी बचाऊँ था पर आज रगतर में कई हैं कि कई चीज़ें जी की है पानी हाथों निकल रही है और बिहार भगत सारू संरक्षण कर परार बिहार मैंने बिरखा रो पानी अपना सहेज

0: तो आपणो आवनाळो जको भगत है वो चोखो जावेला।
1: इन अभियान रे अंतर्गत गावां और शहरां में पानी ने बचावण सारू कई बांतरा काम कराया जावे है, जियां के पुराना तालाब है बारी सफाई कराई जावे है जनसहयोग, या पछे बावड़िया और कुआ है बारी मरम्मत कराई जावे है, बिरखारे पानी ने भेड़ो करने री प्रणाली है बा समझावणी, बीरो प्रदर्शनी लगावणी, बीरो प्रशिक्षण देवणो, ए सब भी शामिल है। सागे ही नुई नाडी और जोड़ बनावना भी शामिल है, पेड़ पौधा लगावना है, पानी री बर्बादी ने रोकनो है, पानी री बूंद बूंद रोज को उपयोग है, अच्छो उपयोग बीरा बाबत प्रचार प्रसार करना है।
0: विशेष रूप अपन जे गांव रे स्कूल है, पंचायत है, सरकारी कार्यालय है, जठे आम जनता है, बियाने भी इन अभियान सु अपन जोड़नो चाहिए। विद्यार्थी है वे आपरा रैली करे, नाटक करे और जागरूकता रा कार्यक्रम चला अपरा लोगों ने पानी बचत रो संदेश जी को भगत सारू दिया करे।
1: सागे ही आपरे खेती मायने कैश दी रहने अभियान है, इरो घणो लाभ है। बिरखारे पानी ने खेत में रोकण सु जमीन में नमी बनोड़ी रहे, आर्द्रता बनोड़ी रहे और सिंचाई खातर पानी है वो सहजी उपलब्ध होते रहे। किसान भाई खेत तालाब मेड़बंदी और ड्रिप सिंचाई पद्धति अपना परार पानी रो सदुपयोग कर सके, इन सु फसल उत्पादन है वो भी बढ़े है।
0: गिरते भूजल स्तर जिको तेजी घट रही है, बिना आप गांव में कई कुआ और हैडपम्प जी का आप देखा सूख गया है, अगर बरसात रो पानी आप जमीन में उतारा तो भूजल स्तर जिको है वो सुधर सके। कैच द रेन अभियान इन दिशा में आप घणो ही महत्वपूर्ण कदम जिको है वो उठाया करे।
1: पर एक बात है, वो जिको अभियान है वो केवल सरकार रो काम को नहीं बल्कि अपारे जिसा हर नागरिक रो कर्तव्य है कि वह पानी ने बचावे, पानी बूंद बूंद रो सदुपयोग करने रा जिका है वह गुर
0: अपनावे। करे आप
1: घर में आपा देखा के टूटी पानी खुलो बेरियो है, गाड़िया दोरिया हाँ, फरस दोरिया हाँ, जरूर तू बत्तो पानी रो उपयोग करनो गलत बात है। जे हर आदमी थोड़ो थोड़ो पानी बचावे तो देश में पानी की समस्या
0: बूंद बूंदू गड़ो कर दे।
1: बिल्कुल, और जो कि लुगाया है महिला शक्ति है बीरी तो इन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है। गाँव में महिला वहाँ घर रे पानी रो सही उपयोग करे, आपने टाबरा ने पानी रे बचत री सीख देवे, समाज में जागरूकता फैलाउन सारू महिला वहाँ और जो कि जो जवान है मोटियार भाई है बारो सहयोग घना जरूरी है।
0: तो सहयोग थाना देखो जरूर रहसी, आप भी इसमें बढ़ चढ़ रही भाग लेवा हिस्सों लेवा और एक एक बूंद जिकी है पानी बात सही सा और उड़ीक रखा के चौकी बिरखा आने वाले भगत में आवे।
1: अबे हम उड़ीक रख रहे हूँ एक अच्छे से गीतड़ ले रही।
0: तो सीमा मिसर गाइडो एक मीठो शोक लोकगीत सुनो सा।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: संदेशा सुने और संदेशाओं पे ली गीत सुने और पाछा आवा आपा खेती बाड़ी री बाता में, पशुपालन री बाता में और सत्यनारायण जी किसान भाई री बाता में। आपा खेती बाड़ी री तो बात हमेशा ही करा, पशुपालन री करा, पर किसान भाई है बारे हित्र।

0: सारू अपन ने कहीं करनो चाहिए, कहीं आप सरकार कर रही है कि किसान जको है वो कहीं है कि मेरी हालत वो ही जाने। अब कई वगत है नहीं घी घना और कदी मुठी चना, कदी है कि यहाँ पैसे की जरूरत होवे, हाथ में पैसों होवे को नहीं, तो फिर जको है कि वो दूसरे चक्कर में पड़तो जावे। तो किसान भाया ने राहत प्रदान करने सारू योजना बनाई जी है, किसान सम्मान निधि। इरो पूरा नाम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इरो मकसद किसान भाया ने आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। आ योजना 2019 में शुरू करी जी ही, खासकर छोटा और सीमांत किसान भाई है बारे खातर आ एक वरदान साबित हो रही है।
1: सही बात के बजरंग भाई के भाई तीन किस्त में अपने रिपिया जी का सीधा खाते में आया करे, ये रकम सु किसान आप रे खेती सारू बीज है, खाद है, दवाई है या दूसरी जी की खेती जरूरत सारू खर्चो आवे भी हमें काम में ले सके। अपनों क्षेत्र जठे बरसात जी की है सीमित मात्रा में आया करे और अपा बिरखार माथे निर्भर रही करा भी स्थिति में आ योजना अपने सारू घनी उपयोगी है। कई बार यहाँ भी वह के फसल खराब हो जाए करे या उत्पादन कम हो जाए करे तब भी भगत आर्थिक सहायता अपने थोड़ी राहत दिया करे। किसान ई पैसा सू अपनी खेती जी की है वह चालू रख सके और जिको उधारी रो काम है कर्ज रो काम है भी बच सके। ई योजना एक खास बात आ है कि ए पैसा जी का है सीधा किसान रे बैंक रे खाते रे में नहीं आया करे है, जिके ने किया करे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT प्रणाली जी की नहीं किया करे। ई प्रणाली सू जिका बिचोलियो जी को काम हो वो काम खत्म हो गयो, पूरी पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार होवे को नहीं और किसान ने पूरा लाभ जी को है इर महीने मिलिया करे। तो जरूरी जी की चीज़ें हैं आधार कार्ड हो गयो, बैंक में खातों है, जमीन की जानकारी है, ऐ चीज़ें हुए तो आप ई योजना रो फायदो जी को है विशेष रूप जी का सीमांत किसान है जिका छोटी जोत है वे आप फायदो इमें ले सके।
0: तो किसान भाई ने आई केवा के आप पंजीकरण इन योजना में करवाओ, इरो लाभ लेओ और आप खेती बाड़ी है भी अच्छो उत्पादन लेओ
1: और कार्यक्रम में फिर आप आगे बढ़ावा मीठे से एक लोकगीत सागे।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

0: साथ।
1: और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

0: तो संदेशा सुने यार, गीतर लो सुने और बात आप देखो इं करा हाँ, आप किसान खेतीबाड़ी रे सागे पशु पालन अपनी आजीविका रो मुख्य आधार है और पशु पालन जी को है ग्रामीण अर्थव्यवस्था रो भी मुख्य आधार है। बीमें चाहे दूध उत्पादन हो, खेती सरू अपा जी का पशु काम में लेवा वो काम हो और सगला जी का इन जुड़ोड़ा काम है बीरो आधार अपनो पशु है। और पशु जब स्वस्थ रहेला, हष्ट पुष्ट रहेला, आप रो उत्पादन देवेला पूरो है तो ही कहीं है कि अपा वो अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार रह सकेला। तो बीमारी हारी बीमारी या बीमारी कोई कमी रह जाए तो सगली व्यवस्था जी की क्या नहीं बजरंग जी गड़बड़ा जाया करे।
1: बिल्कुल, तो पशु आहार अपन चोखो देवनो है और पशु आहार मायने जो संतुलित आहार है बीरो मायने प्रोटीन विटामिन खनिज लवण और पानी सागे सागे सगड़ा पदार्थ होना चाहिए। आज जिका खनिज लवण है और मायने कैल्शियम सत्यनारायण जी है जिको है वो सबसे जरूरी तत्व है। कैल्शियम पशुआ रे शरीर ने मजबूत बनावे है, दूध उत्पादन ने बढ़ावे है और शारीरिक क्रियावा ने सही ढंग से चलावण में पशुआरी मोकड़ी मदद करे।
0: कैल्शियम जो है मुख्य रूप से हड्डियां और दांता में मिलिया करे। पशु रे शरीर रो जानकार कह है कि लगभग 90% जो है कैल्शियम हड्डियां में संग्रहित रहा करे। ए हड्डियां ने मजबूती देवे और शरीर रो ढांचो जो है मजबूत बनावे। अगर पशु ने पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिले तो हड्डियां कमजोर पड़ जाए और पशु जो है बीमार हो सके। तो इस चीज़ों अपन ने ध्यान रखना है। पशुओं में कैल्शियम की कमी है बा नहीं दे नहीं होनी चाहिए और जब लक्षण दिखाई देवे तो अपने तुरंत पशु चिकित्सक को संपर्क कर प्रार जानकारी जी की है और उपाय जी को है वो करना चाहिए।
1: पशुओं ने पूरक आहार देना चाहिए कैल्शियम से जुड़ी उड़ और अब सत्यनारायण जी आज रे ग्रामीण जगत कार्यक्रम रो समय पूरो हो रियो है।
0: अपन लेवा सीख
1: तो बजरंग सारस्वत
0: और सत्यनारायण शर्मा ने
1: आज्ञा देवसा घना घना राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का ये कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे थे श्री बजरंग सारस्वत और श्री सत्यनारायण शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 8:15 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

आप सुन रहे थे मिताली सिंह को। इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के इस समय 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला गीत कुमार सानू और लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत बद्ध किया है जतिन ललित ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में दिल है कि मानता नहीं, फिल्म का ये गीत अनुराधा पोटवाल के स्वर में, गीतकार फैज अनवर, संगीतकार नदीम श्रवण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में, राजा रानी फिल्म से।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत में अब कसूर फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में कसूर फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के इस समय 8:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहले सीमा मिश्रा का गाया ये लोकगीत।

0: सतीश देरा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटे

0: बेलूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में

0: पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम्स पर

थमिक कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार

0: 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile.

जी हाँ, माँ तेरे जैसा कोई कहीं ना। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आज का ये अंक समर्पित करते हैं हमारी माँ को। माँ एक ऐसा शब्द जिसे लेने से मुंह भर आता है, मन और आंखें सब भर आती हैं। सच्चे मन से माँ को पुकारने पर माँ ही होती है जो अपने बच्चे के लिए दौड़ी चली आती है। प्रकृति में हर माँ अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए सदैव आतुर रहती है। सच में माँ शब्द की भावना सारे विश्व में एक समान है। हर दिवस मातृ दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि माँ के बिना कहाँ हमारा वजूद है। माँ ही होती है जो अपने बच्चे के भावों की अभिव्यक्ति समझती है और उसे जीना सिखाती है, जीवन में सच्चाई से लड़ना सिखाती है।

श्रोताओं, संसार में निस्वार्थ प्रेम को कोई परखना चाहे तो वह सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ माँ का ही प्रेम हो सकता है। धैर्य और संयम का प्रतीक है माँ। माँ के लिए जितना कहा जाए उतना ही कम होगा।

श्रोता माँ अपने भटके हुए बच्चे को भी ढूंढ लेती है, जाने अनजाने कहीं रास्ता भटक जाए बच्चा तो उसे माँ ढूंढ ही लेती है। और भटके हुए अपने बच्चे के लिए भी माँ का प्रेम उतना ही होता है जितना अपने दूसरे बच्चे के लिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माँ के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव मन में रहे। और एक बात और कि एक नादान बच्चे के लिए सारा संसार होती है माँ। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे भले चाहे माँ से दूर होने लगे बच्चा, लेकिन माँ के लिए हमेशा ही वह नादान बच्चा होता है।

आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार के स्वर में आंधिया फिल्म का ये गीत। इससे पहले आपने फिल्म संगीत में सुना बोलो राम फिल्म और संचोक फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही मातृ दिवस पर माँ को समर्पित इस फिल्म संगीत के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के इस समय 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला अंक।

आप सुन रहे थे सौतन फिल्म का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का ये अगला गीत किशोर कुमार और अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म का नाम है बाबू।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए बेटा फिल्म का ये अगला गीत अनुराधा पोडवाल के स्वर में।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का ये आखिरी नगमा क्रांति फिल्म से। स्वर है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के।

आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर ने तीन मुकेश के स्वर में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर।

0: आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर ने नितिन मुकेश के स्वर में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।
1: भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Shrimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London.

0: विद्वान डी श्रीनिवास कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस।
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
0: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है.
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: Sutkia.
1: That was Taniyavartanam played on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग अहिर भैरवी सेट टू आदि ताल

0: इसके साथ ही आज की रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन मृदंगम by Sri Yashwant Hampi.

0: Holi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashvani.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के इस समय 11 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सभा आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के इस समय 11 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम में 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के इस समय 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण हमारी इस सभा के साथ अब यहीं संपन्न होता है। कल प्रातः 5:53 पर हम अपनी पहली सभा के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।